अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

श्री अयोध्या राम जी लला जी की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। श्री रमापति रामचंद्र जी की जय। श्री वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की जय।

ये आकाशवाणी का आराधना चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा पर विशेष प्रसारण।

आदर, आभार, अभिनंदन, सुप्रभात श्रोताओं। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के इस विशेष प्रसारण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अशफाक और आज इस सफर में मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं। आप इस विशेष प्रसारण को आकाशवाणी के एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज ऑन एआईआर ऐप के आराधना चैनल तथा डीटीएच के माध्यम से भी सुन रहे हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी हर ताज़ा और महत्वपूर्ण जानकारी, मौसम के हालचाल, यात्रा मार्गों की स्थिति, प्रशासन द्वारा जारी महत्वपूर्ण सूचनाएं और हमारे संवाददाताओं की विशेष रिपोर्ट्स हम आप तक लेकर आएंगे। तो आइए श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के इस विशेष प्रसारण का शुभारंभ करते हैं।

0: जी श्रोताओ, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप समाप्त कर रहे हैं। आप इस विशेष प्रसारण को आकाशवाणी के FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, OTT प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज ऑन AIR ऐप के आराधना चैनल तथा DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। श्रोताओ, आप सब जानते हैं कि लगातार बारिश और मौसम की वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित किया है। ये निर्णय पूरी तरह श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। जैसे ही प्रशासन की ओर से कोई भी अतिरिक्त सूचना या नई अपडेट या जारी होगी, हम सबसे पहले वही जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हम जम्मू का रुख करते हैं। जम्मू से हमारे संवाददाता जावेद मेहराब साहब फोन लाइन पर अभी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, अगर आप हमारी बात सुन पा रहे हैं, आपका हार्दिक स्वागत है आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण में। आप
1: बहुत
0: हम
1: शुक्रिया।
0: जी आप हमें जम्मू की ताजा तरीन स्थिति से जरा अपडेट कराएं।
1: मौसम विभाग की ऐन भविष्यवाणी के मुताबिक यहाँ आज जम्मू में सुबह तड़के से ही घने बादल आसमान पर छाए हुए थे और वक्फे वक्फे से कई बार रात में भी और अभी भी तेज बारिश हो रही है और आज शदीद बारिश होने के आसार भी जताए जा रहे हैं।
0: जी जी,
1: खराब मौसम के कारण ही पवित्र श्री अमरनाथ जी की यात्रा स्थायी रूप से रोकने का ऐलान हुआ था और जम्मू शहर में इस खराब मौसम की वजह से जो श्रद्धालुओं की यात्रा रुकी है उसकी वजह से संख्या यहाँ श्रद्धालुओं की बढ़ी भी है और लगातार जो पहुंच रहे श्रद्धालु जो है वो ट्रांजिट कैंप्स के अलावा रेलवे स्टेशन के नजदीक होटलों, शहर के मुख्य बाजारों में स्थित छोटे होटलों के अलावा निवास स्थान भगवती नगर में भी तीर्थ यात्रा के दोबारा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। अनुमान के मुताबिक शहर के विभिन्न हिस्सों में करीबन 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु रुके हुए हैं और हालांकि मौसम की भविष्यवाणी को देखते हुए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड प्रशासन के अधिकारियों और तमाम जो यात्रा को देख रहे अधिकारी हैं उनके मुताबिक फिलहाल तमाम प्लेटफॉर्म्स पर ये ऐलान और स्पष्ट किया हो गया है कि तीर्थ यात्रा मौसम विभाग की भविष्यवाणी और बेहतर स्थिति में दोबारा शुरू होगी, लेकिन उसके बावजूद रेल और सड़क के माध्यम से तीर्थ यात्री यहाँ जम्मू पहुंच रहे हैं। खासतौर पर जो यात्री रेल के माध्यम से पहुंच रहे हैं वो सीधे जम्मू पहुंच रहे हैं, लेकिन जो मुख्य द्वार लखनपुर से जो तीर्थ यात्री यहाँ पहुंच रहे हैं वो वहीं स्थित जो बहुत अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिले हैं, जिनमें विजयपुर, कठुआ, सांबा और खुद लखनपुर का जो एरिया है वहां पर बनाए गए ट्रांसिट कैंप्स में तीर्थ यात्रियों को फिलहाल उन्हीं जगहों पर रोका गया है और जो रेल के माध्यम से सीधे जम्मू पहुंच रहे हैं उन्हें यहाँ ये बहुत बड़े ट्रांजिट कैंप्स के अलावा और ट्रांजिट कैंप्स को खोलने की इजाजत मिल गई है सरकार को, तो उन्होंने तीर्थ यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए

0: यहाँ ट्रांजिट कैंप्स को भी खोला है, और उसके अलावा जो यहाँ होटल आसपास के जो छोटे होटल हैं उनमें श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी हुई है, और वहाँ आसपास के इलाकों में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या मौजूद है। हालांकि सावन का यहाँ आगमन हो चुका है और श्रद्धालुओं को यहाँ के मुकामी जो मंदिर हैं, रघुनाथ जी मंदिर और जो उसके अलावा प्रथम शिव मंदिर पीर को है, पंचवक्तार मंदिर है, रंबेश्वर मंदिर है, और उसके अलावा जो विभिन्न और मंदिरों में पूजा अर्चनाएं करते हुए और मंदिरों के अंदर भी श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखी जा सकती है, और तीर्थयात्री अपने खाली समय में यहाँ के पर्यटन स्थलों का भी भ्रमण कर रहे हैं। कल शहर के अंदर हालांकि सुबह और रात को तो बारिश हुई थी, लेकिन दिन में कल थोड़ा वक्फे वक्फे से ही बारिश हो रही थी, और इतनी ज्यादा नहीं थी बारिश, इसलिए तीर्थयात्री और श्रद्धालु जो है वो यहाँ के मंदिरों की ओर भी जा सके, और पर्यटन स्थल जो खास यहाँ का शहर का बीचों बीच है, जहाँ बागे बहू और उसके अलावा उसके अंदर जो काली माता का मंदिर है, उनके आसपास तीर्थयात्रियों का जमावड़ा जमा हुआ था, और काफी तीर्थयात्री आगे पीछे शहर के अंदर और शहर के बीचों बीच देखे जा सकते थे। स्थानीय मंदिरों में दर्शन करने वाले और श्रद्धालुओं की, जैसे मैंने कहा, कि संख्या बढ़ गई है, जिससे शहर के धार्मिक माहौल और पूजा अर्चनाओं और भजन में हिस्सा ले रहे श्रद्धालुओं ने भी शहर को भक्तिमय बनाया हुआ है, और इस माहौल को देखते हुए श्रद्धालु भी इत्मीनान के साथ न सिर्फ इन ट्रांसिट कैंप्स में बल्कि होटलों में भी इत्मीनान के साथ अभी इंतजार कर रहे हैं यात्रा के फिर से शुरू होने का। इस बीच पर्यटन विभाग के अनुसार श्रद्धालुओं के लिए जम्मू में विभिन्न ट्रांजिट कैंप्स में के अलावा अतिरिक्त हजारों श्रद्धालुओं के लिए अतिरिक्त ठहरने, आराम करने, भोजन, चिकित्सा और तमाम तरह की व्यवस्थाएं और प्रबंधन किया हुआ है। जरूरत पड़ने पर यहाँ तमाम धर्मशालों और अन्य होटलों में भी श्रद्धालुओं को ठहराया जा रहा है। जो यहाँ धर्मशालाएं हैं, अलग अलग धर्मशालाएं हैं, अग्रवाल धर्मसभा है, अलग अलग जो धर्मशालाएं हैं उनमें भी श्रद्धालुओं के ठहरने का प्रबंध किया गया है, और अपने परिवार सहित जो यहाँ पहुंचे तीर्थ यात्री हैं उनका भी यही कहना है। हालांकि हमारी बात भी हुई तो खराब मौसम के चलते तीर्थ यात्री भी इत्मीनान के साथ इंतजार कर रहे हैं, और इस बीच शहर को देखने और यहाँ के मंदिरों में पूजा अर्चनाओं में हिस्सा लेने का उन्हें भी मौका मिल रहा है, और उसी किसी स्थिति के साथ वो अपना समय जो है वो अभी पास कर रहे हैं, लेकिन इत्मीनान चेहरों पर है। थोड़ा बहुत मौसम को लेकर वो पूजा अर्चनाएं भी कर रहे हैं कि जल्द मौसम ठीक हो और वो अपने बाबा बर्फानी के बुलावे पर घाटी की ओर रवाना हो, ये उनकी मनोकामना है। लेकिन इत्मीनान ये है कि प्रशासन ने, यहाँ के निवास स्थानियों ने, उसके अलावा जो यहाँ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, तमाम तरह की जो एजेंसियां हैं वो श्रद्धालुओं की सुरक्षा, श्रद्धालुओं के प्रबंधन में लगी हुई है, और उसके अलावा जो सरकार के लिए चैलेंज है स्थानीय लोगों का काफी, क्योंकि खराब मौसम की वजह से तभी नदी का जो स्तर है पानी का
1: जी
0: वो बढ़ रहा है, वो उसके आसपास जो इलाके हैं वहां दिन भर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें ये स्पष्ट करती और ऐलान करती नजर आ रही है कि नदी के आसपास थोड़ा ध्यान से दूर रहे और ज्यादा नदी के आसपास ना जाया जाए, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जब पानी बारिश का बारिश तेज होती है
1: जी जी
0: तो वो सारा पानी जो है वो तभी नदी के ही की तरफ आता है, और जिसकी वजह से इसका स्तर बढ़ जाता है, और कई जगहों पर कई ऑपरेशंस भी चलाए गए, जहाँ कुछ एक जगहों पर कहीं बच्चे कहीं जानवर फंसे हुए थे उनको बचाया भी गया, और उसी को देखते हुए खास तौर पर यहाँ की जो सिविल डिफेंस टीमें हैं जो वो भी कल शहर के अलग अलग जगहों पर और खास तौर पर तरी के तटों के नजदीक उन्होंने लोगों को आने से रोका है, और खास तौर पर वो भी अपना रोल निभा रहे हैं इस खराब मौसम के चलते किसी तरह की कोई ऐसी आपत्ति या कोई ऐसी घटना न घटे जिसकी वजह से फिर परेशानी का सामना हो।

0: उसी को लेकर ये सारी व्यवस्थाएं और सारी जो जानकार और वार्निंग्स दी जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं की जान माल और वो जो यहाँ मेहमान पहुंचे हैं उनका ध्यान रखते हुए उन्हें अवगत भी कराया जाए कि कहाँ। कई बार क्या होता है कि स्थानीय लोगों को तो इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन श्रद्धालु कई बार गलती कर जाते हैं। इसीलिए ये सिविल डिफेंस की टीमें, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें खासतौर पर तभी के इन तटों पर घूम रही है ताकि किसी तरह की कोई घटना न घटे और जो तीर्थ यात्री है वो पूरे जोश खरोश के साथ, अगर आप इन सभाओं के अंदर देखें तो जो यहाँ जो अग्रवाल सभा है, महाजन सभा है, अलग अलग जो सभाएं हैं, ब्राह्मण सभा है, राजपूत सभा, जो अलग अलग जो बड़े स्थल है जहाँ पर तीर्थ यात्रियों को रोका गया है, तो वहाँ दर्शन की उम्मीद में बाबा बर्फानी के भक्त जोश खरोश के साथ जयघोष लगाते हुए ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि जल्दी से मौसम ठीक होगा और यहाँ पर उन्हें फिर से इजाजत होगी एक बार फिर घाटी की ओर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। तो हालांकि इन श्रद्धालुओं का ये कहना है, क्योंकि यहाँ खाने पीने भोजन व्यवस्थाओं की कमी नहीं है, तो वो भी अपनी तरफ से ये कह रहे हैं कि स्थानीय लोगों के सहयोग से जगह जगह पर लंगरों के बने रहने से उन्हें काफी राहत मिल रही है और मौसम में सुधार और प्रशासन की अनुमति के साथ वो दोबारा बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हो जाएंगे, ये उनकी उम्मीद जगी हुई है। जी
1: जी जावेद साहब, प्रशासन द्वारा क्या कोई अपडेट हमारे पास है कि स्थिति कब तक सामान्य हो सकती है?
0: देखिए, ये पूरी तरह से मौसम विभाग की भविष्यवाणी पर ही होगा। मौसम विभाग की जो अभी तक स्पष्ट रूप से जो उन्होंने अभी तक जो अपना जो ऐलान किया हुआ है वो अभी 23 तारीख तक मौसम खराब रहेगा। तो मौसम को लेकर, मौसम विभाग की भविष्यवाणी को लेकर और मौसम विभाग की तरफ से जो ऐलान किया गया है उस पर खास तौर पर और सख्ती के साथ अमल करने को पहले दिन से ही कहा गया था। कई बार यहाँ प्रशासनिक अधिकारी, जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी है, उन्होंने यहाँ जो विभिन्न ट्रांसिट कैंप का जो दौरा किया उसके दौरान भी उन्होंने लोगों से, श्रद्धालुओं से ये बात कही कि जब तक, जहां तक मौसम का जो सवाल है वो पूरी तरह से उस पर सख्ती से अमल किया जाएगा, क्योंकि सरकार चाहती है कि प्रशासन ये चाहती है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा जो है वो प्रथम रूप से प्राथमिकता में है, तो इसलिए किसी भी तरह से उसमें रिस्क नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल 23 तारीख तक ये जो भविष्यवाणी है और ये जो मौसम का जो अलर्ट है वो जारी है। तो जब तक मौसम पूरी तरह से, न सिर्फ जम्मू में बल्कि घाटी में भी जब तक मौसम, क्योंकि वहां भी अबरालूद मौसम बना हुआ है,
1: जी जी
0: कल सुबह कहते हैं वहां बहुत तेज बारिश हुई, शहर के अंदर लोगों को बहुत जबरदस्त पानी भराव, जल भराव हो गया, जिसकी वजह से सख्त दिक्कतों का सामना स्थानीय लोगों को था। तो इस बीच जो मेहमान यहाँ पहुंच रहे हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसी को लेकर, क्योंकि तेज बारिश, कई बार आज के मौसम में हल्की बारिश नहीं हो रही है, अचानक 1 घंटे की तेज बारिश सारे माहौल को, सारी स्थिति को चेंज कर देती है। इसीलिए किसी भी तरह का रिस्क न लेते हुए मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है, मौसम विभाग का जो ऐलान है उस पर सख्ती से अमल किया जाएगा, और जैसे ही मौसम बिल्कुल ठीक साफ होने के आसार दिख जाएंगे तो यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी।
1: हम भी मनोकामना करते हैं कि जल्द ही यात्रा फिर से शुरू हो जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब हमारे साथ बात करने के लिए।
0: बहुत शुक्रिया।
1: जी श्रोताओ, आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर का विशेष प्रसारण, और इस विशेष प्रसारण को हम आगे बढ़ाएंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ।

0: जी श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप समाप्त कर रहे हैं। आप इस विशेष प्रसारण को आकाशवाणी के एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन एआईआर के आराधना चैनल, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स तथा डीटीएच के माध्यम से भी सुन रहे हैं। इससे पहले हम जम्मू की स्थिति जान रहे थे और अब आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर, रुख करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग श्रीनगर जम्मू का, जहां से यात्रा और यातायात की स्थिति पर नजर बनाए हुए हमारे संवाददाता मोहम्मद तस्कीन साहब। तस्कीन जी, आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण में आपका फिर एक बार स्वागत है। बताइए, राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस समय क्या स्थिति है, मौसम और यातायात को लेकर प्रशासन की क्या तैयारी और ताजा जानकारी है?
1: जी शुक्रिया। मौसम बिल्कुल अब्र आलूद है। कल बारिशें हुई थी दोपहर 12 बजे तक सुबह से ही, और अच्छी खासी बारिशें हुई थी रामबन डिस्ट्रिक्ट में, रामबन बानहाल सेक्टर में नेशनल हाईवे पर, तो उसका कोई असर नहीं पड़ा था। हालांकि कुछ मुकामात पर इक्का दुक्का पत्थर गिर आए थे, थोड़ा थोड़ा मतलब तीन चार जगहों पर पत्थर भी गिर आए थे और थोड़ा थोड़ा स्लाइडिंग भी हुई थी, और एक लेन जो है हाईवे की हमारी वो मुतासर भी हुई थी, उस पर ट्रैफिक भी कुछ वक्त के लिए मुअत्तल रहा था। लेकिन जो मजमूई तौर पर दूसरी लेन से ट्रैफिक को चलाया गया, बंद हाईवे

0: हुई और ट्रैफिक चलता रहा। आज सुबह से ही मौसम बिल्कुल अब्र आलूद है और हल्की फुहार जैसी बारिशें हुई और लग रहा है कि बहुत मतलब बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है, क्योंकि बादल बिल्कुल लो लाइंग है, बहुत नीचे तक बादल है, धुंध छाई हुई है। और जो इस दौरान जो ट्रैफिक है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर, क्योंकि यात्रा अब आज तीसरे रोज भी मौतल है, सस्पेंडेड है, टेम्परली सस्पेंडेड की गई है मौसम हुई खराबी की वजह से, तो उसके आज तीसरा दिन है। लेकिन बाकी जो ट्रैफिक है, जो अब यात्रा न होने की वजह से बाकी ट्रैफिक को रूटीन से चलाया जा रहा है, इस वक्त कश्मीर से जम्मू की तरफ मुसाफिर गाड़ियां भर रही हैं LMVs, तो इसी तरह जम्मू से भी ट्रैफिक निकलना शुरू हो गया है। रात 11:30 बजे के बाद हाईवे पर ट्रैफिक को चलने की इजाजत नहीं दी जाती, जो पहले से ही यात्रा के पेश नजर जो शेड्यूल बनाया गया है, ट्रैफिक एडवाइजरी बनाई गई, तो उसी के मुताबिक ट्रैफिक चल रहा है। अलबत्ता इससे अभी फिलहाल यात्रा नहीं है। हालांकि कल यात्रा की बहुत सारी गाड़ियां करीबन 2000 के करीब जो यात्री कल कश्मीर से वापस जम्मू की तरफ गए, कल 3:30 बजे तक यह सिलसिला जारी रहा। तो आज इस मौसमी मतलब जो खराबी के बीच जो लोकल ट्रैफिक है, मुसाफिर ट्रैफिक है, सिविल ट्रैफिक है, उसे चलने की इजाजत दी जा रही है और अभी ट्रैफिक अपने अपने मंजिलों की तरफ चल रहा है। और जो बादल बहुत गहरे बादल हैं इस वक्त और बारिशों का जो इम्कान जाहिर किया है महकमा मौसमियात ने, तो उसका लग रहा है कि वो पेशन गोई आज से नाफ़ज़ मतलब उस पर मतलब उसके हिसाब से जो बताया गया है कि बहुत बारिशें होनी है, खासकर चिनाब वैली को भी इसमें जिक्र किया गया है, तो वैसा लग रहा है कि वैसा मौसम बन रहा है और उम्मीद है कि बारिशों का सिलसिला शुरू हो मतलब घंटे दो घंटे में, ऐसा मौसमी सूरतहाल बता रही है।
1: जी तस्कीन साहब, जो प्रशासन द्वारा कुछ ऐसे इकदाम उठाए गए या फिर कुछ ऐसी अपडेट्स या कुछ नसीहतें हमारे यात्रियों के लिए?
0: बिल्कुल, ये मतलब ट्रैफिक एडवाइजरी रोज जारी की जाती है। सबसे पहले जो इसमें जो पिछले 24 घंटों का कहा गया है कि जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का मारो रामबन और किश्तवाड़ी पत्थरशेर बीबी के दरमियान के इलाके में कहा गया है कि इसमें ट्रैफिक मूवमेंट जो है मतलब कुछ जगहों पर सड़क जो है इस एरिया में अभी फोर लेनिंग का काम नहीं हुआ है, इसमें अभी काम चल रहा है, तो इस एरिया में सिंगल लेन ट्रैफिक है। और इस जो मारो और किश्तवाड़ी पत्थर के दरमियान का ये जो स्ट्रेच है करीबन 17-18 किलोमीटर का, तो इसमें कहा गया है कि ट्रैफिक की जो मूवमेंट है कल बहुत सुस्त रफ्तार रही। तो इसके अलावा जो महकमे मौसमियात ने लोगों से ये जो यात्रियों का भी इसमें है कि जो मौसमी हालात के पेश नजर जो लोगों से अपील की, वो कौमी शाहराह पर हाईवे पर सफर से पहले हाईवे ट्रैफिक का कंट्रोल रूम से यूनिट करें। और इस दौरान यह भी कहा गया कि जम्मू रामबन या उधमपुर से किसी भी किस्म की यात्रा और टूरिस्ट गाड़ी को कश्मीर की तरफ चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी, वो उनको वहां पर रोका जाएगा। इसके अलावा जो जम्मू से ट्रैफिक कश्मीर की तरफ आ रहा है, उनसे ये भी कहा गया है कि वो जवाहर टनल का इख्तियार करें रास्ता, ताकि वो लांबर में जो टोल टैक्स वगैरह दे रहा है उससे बचने के लिए, वहां पर ट्रैफिक का जमावड़ा बढ़ाने के लिए, वो पुराने जो नेशनल हाईवे का पुराना जो जवाहर टनल एरिया है उसको इख्तियार करें। इसी तरह ट्रैफिक पुलिस ने ये भी अपनी एडवाइजरी में जो डोडा बदरवा किश्तवाड़ के लोग हैं उनसे कहा गया है कि वो नाशरी के बजाय पत्नीटॉप के पुराने रोड को इस्तेमाल करें और अपने मजलों की तरफ और हाईवे से कोशिश करें कि वो सब। इस दौरान जो मुसाफिर ट्रैफिक है जम्मू कश्मीर का, उनसे कहा गया कि वो रात के अवकात में हाईवे पर सफर से गुरेज करें, दिन के अवकात में सफर करें, तो इससे ताकि ये जो बानहाल और रामबन का स्ट्रेच है इसमें पत्थर गिरने, लैंड स्लाइडिंग होने और बाकी जो जो फोर लेन शाहरा का काम चल रहा है उसकी वजह से इन चीजों से बचने के लिए शाहरा पर कम से कम ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए लोगों से अपील की गई। वो पत्नी टॉप और डोडा किश्तवाड़ वाले जो है वो पत्नी टॉप का अख्तियार रास्ता करें और जो कश्मीर जाने वाले हैं वो पुराने यानी जवाहर टनल का रास्ता अख्तियार करें। इस दौरान जो ट्रैफिक के लिए कहा गया है कि आज दोनों तरफ से अगर मौसम ठीक रहा, सड़क की हालत ठीक रही, तो दोनों तरफ से जो गाड़ियां हैं उन्हें मुसाफिर गाड़ियां हैं उन्हें चलने की इजाजत दी जाएगी। अलबत्ता ट्रकों को आज सिर्फ कश्मीर से मुतबादिल दिन पर चलाया जा रहा है, अल्टरनेट दिन पर चलाया जा रहा है, तो आज उन्हें कश्मीर से चलने की इजाजत दी जाएगी जम्मू की तरफ। इसके अलावा जो जो आज ट्रक कश्मीर से बाकी जो मजमूई तौर पर श्री अमरनाथ यात्रा आज तीसरे रोज भी मौतल है, उधमपुर जम्मू और रामबन से कश्मीर

0: किसी भी अमरनाथ गाड़ी को या यात्री को आज तीसरे रोज पे चलने पर पाबंदी रहेगी। और ये ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक जो ये हुक्म जारी किया है ट्रैफिक पुलिस ने, तो उस पर सबसे कहा गया है को अमल दरामद करें और अपने घर से सफर करने से पहले, सफर मतलब इरादा करने से पहले वो ट्रैफिक कंट्रोल रूम से जरूर पता करें, हाईवे की सूरत हाल जाने और खासकर रामबन बानहाल से ट्रेस के बारे में जानकारी हासिल करें, उसके बाद ही वो हाईवे पर आए। तो फिलहाल जो यहाँ पर यात्री पिछले दो दिन से रुके हुए हैं 1000 से जायद है रामबन, उनका कल हमने चेक किया था, बिल्कुल उनका खाने पीने का इंतजाम बराबर चल रहा है और वो बिल्कुल मजे से आराम से, खासकर यात्रा निवास चंद्रकूट में वहां पर करीबन 1000 से जायद यात्री जो है वो मुसलसल कयाम कर रहे हैं और जैसे ही उन्हें ग्रीन सिग्नल मिलेगा पवित्र गुफा की तरफ दोबारा सफर करने का, यात्रा दोबारा शुरू होने का जैसे उन्हें ग्रीन सिग्नल मिलेगा उन्हें तरजीही बुनियादों पर यहां से रवाना किया जाएगा।
1: धन्यवाद तस्कीन जी, राष्ट्रीय राजमार्ग और मौसम की स्थिति से जुड़ी इस विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए। हम भी सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध करते हैं कि वह प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, क्योंकि सुरक्षा ही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आकाशवाणी का विशेष प्रसारण आप समाप्त कर रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।

जी श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। आप इस विशेष प्रसारण को आकाशवाणी के एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ और एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के आराधना चैनल, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स तथा डीटीएच के माध्यम से भी सुन रहे हैं। श्रोताओं, हम अब तक लगातार जानकारी पहुँचा रहे हैं। आइए

0: रुक करते हैं पहलगाम बेस कैंप का। पहलगाम श्री अमरनाथ जी यात्रा का पारंपरिक मार्ग है और इस समय वहां की स्थिति पर सभी की नजरें टिकी हुई है। हमारे संवाददाता एस तारिक जी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तारिक साहब, आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण में आपका हार्दिक स्वागत है।
1: आदाब, सभी श्रोताओं को मेरा सुप्रभात।
0: जी, सबसे पहले हमें बताएं कि पहलगाम और चंदनवारी क्षेत्र में इस समय मौसम कैसा है, प्रशासन की ओर से क्या ताजा जानकारी सामने आ रही है, और यात्रा के अस्थायी रूप से स्थगित होने के बाद बेस कैंप में श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं?
1: हाँ बिल्कुल अशफाक जी, मैं आपको विस्तार से बताने की
0: जी
1: कोशिश करूंगा।
0: जी जी
1: मौसम के हवाले से जो आपने बात छेड़ी है, आज सबसे पहले मैं बता दूं, आज 19 दिन गुजर गए हैं आप पवित्र यात्रा के, और इसके साथ ही अमरेश्वरी पर्वतों और आसपास के क्षेत्रों में आकाश उबर आलूद है। मौसमी विभाग के अनुसार आज भी कहीं मध्यम तो कहीं तेज वर्षा होने की संभावना है,
0: जी जी
1: जबकि रात को ठहर ठहर के बारिशें हुई, इस वक्त मध्यम बारिशें हो रही है। मौसम के इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए, जैसे कि आपने बताया कि श्री अमरनाथ जी यात्रा को यात्रियों की सुरक्षा और कुशलता को मद्देनजर आज लगातार तीसरे दिन भी आरजी रूप से मुअत्तल रखा गया है, निलंबित रखा गया है। ये निर्णय यात्रा प्रशासन ने भारतीय मौसम विभाग की पेशगोई के आधार पर लिया है। इसके तहत आज भी नुनवर चंदनवारी आधार शिविरों से किसी भी श्रद्धालु को पवित्र गुफा के ओर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई है, जबकि कल बालतल की तरफ से जो रवाना होने वाले तकरीबन 6,000 से अधिक ये जो भगत थे पवित्र गुफा में दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। तो इस तरीके से पहलगाम क्षेत्र से कोई भी यात्री आगे नहीं बढ़ा, सबके सब जो इस वक्त यात्री है तकरीबन 8,000 के करीब जो हमें आंकड़े मिले हैं, अब इस वक्त नुनवन आधार शिविर में बिल्कुल ठहरे हुए हैं, अपने वो जो दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो प्रशासन का कहना है कि जैसे ही मौसम में सुधार आएगा तो यात्रा मार्ग को सुरक्षित करार दिया जाएगा, तो श्री अमरनाथ जी यात्रा को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो BRO है यात्रा मार्ग का निरीक्षण और सर्वे कर रहे हैं, ताकि मार्ग की पूरी तरह से जांच की जाए, अगर किसी जगह कोई कमी पीछे हो तो वो उसको ठीक कर रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट वाले भी इसको बाजाब्ता तौर पे चेक करते रहते हैं, पुलिस अधिकारी या दूसरे जितने भी विभाग हैं सब रोड को देख रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं। तो रोड इस वक्त बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये इन एडवांस कोई मौसम की कोई ऐसी अभी तक लगभग तरीका जो इन्फॉर्मेशन मिली है मुझे कि 23 तक अभी मौसम ठीक नहीं है, तो 23 तक इसको निलंबित रखा जा सकता है यात्रा को। तो इस
0: जी
1: समय 8,000 से अधिक यात्री नुनवन आधार शिविर में बिल्कुल पहलगाम के विभिन्न निजी होटलों में भी और ठहरे हुए हैं।
0: जी
1: इन्हें आवास, भोजन, चिकित्सा और दूसरी आवश्यक सहूलियात प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई गई है, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल जो इस वक्त नुनवन आधार शिविर में है कि वहाँ तकरीबन 600 टेंट लगे हुए हैं और तकरीबन 13 जो लंगर है जिन्हें खाने पीने की कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल जितने भी टेंट्स हैं या हटे हैं वहाँ सबके सब विंड प्रूफ वाटर प्रूफ है, उनमें कोई परेशानी नहीं है, बिस्तर लगा हुआ है, वो इस वक्त भी अपने तरीके से जो इबादत है वो कर रहे हैं। लेकिन उनकी जो उत्साह है, अभी जो उनकी जो क्यूरोसिटी है वो ये है कि हम कम बाबा के द्वार जाएं और वहां दर्शन पालें, तो ऐसा जरूर वक्त आएगा जल्दी 1-2 दिन में मौसम ठीक रहेगा और वहां चले जाएंगे। श्री अमरनाथ के जो दौरान अब तक लगभग 4.25 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त कर चुके हैं, एक अच्छी संख्या रही है।
0: जी
1: जिस पर आपको भी मौसम की हम बात ही कर रहे, तो आज के दिन भर का आकाश में जो बादल छाए रहने की गरज चमकने के साथ साथ बारिश का इम्कान भी है, जबकि फजा धुंधला रहेगी, ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्का है, जो सबसे कम जो आज जो दर्जे हरारत रहने वाली है, तवक्का है कि आगे का मौसम बेहतर रहेगा, हवाएं हल्की और मुख्तलिफ सिमतों से चलेंगी, बारिश होने का इम्कान 90% मौजूद है, और वातावरण में नमी की जो मात्रा इस वक्त देखी जाती है वो 60% तक है। तो ये भी आपको साथ साझा करता चलूं कि
0: जी जी
1: यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पहले ही यात्रा के दोनों मार्गों पर यानी पहलगाम और बालतल ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी मौसम की निरंतर निगरानी के लिए जो डॉप

0: किरदार स्थापित किए हैं।
1: हम्म,
0: ये इनकी जो काम, जो इनका काम होता है, ये आधुनिक प्रणालियों, बादल फटने, मूसलाधार वर्षा, गरज चमक, ओले या वर्षिटी को तेज हवाओं जैसे स्थानीय मौसमी खतरात की बर वक्त पहचान करती है
1: जी
0: और तुरंत चेतावनी जारी करते हैं, और जिसके आधार पर यात्रियों की सुरक्षा और यात्रा के आगे की संचालन से जो जुड़े निर्णय होते हैं वो लिए जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, ये इस वक्त जो हमारे यात्रा प्रशासन ने किया है कि हर चीज पे, यानी कि अगर सिक्योरिटी की बात करें, उसके मौसम, बाकी जितने भी चीजें खान पान की है, सब चीजों पे बड़ी बारीक बीनी से नजर रखी जा रही है, और सिर्फ इतना है कि किसी भी यात्री को कोई परेशानी ना हो।
1: जी जी जी धन्यवाद तारिक साहब, जैसा कि आपने बता दिया कि प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाई हुई है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को पूरी तरह से यकीनी बनाया जा रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए।

0: जी श्रोताओं, समाचार का वक्त हो चला है। आप इस विशेष प्रसारण को आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं और हम आप तक लगातार अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। आइए आकाशवाणी दिल्ली चलते हैं, समाचार सुनते हैं।
1: क्या आप परेशानी? टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी के बाद अमेरिका ने ईरान पर घातक हमले किए। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान ये बैठक पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती है। बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता और समन्वय को प्रदर्शित करना है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
3: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
2: तीन राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में

0: मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।
1: पनामा सर्व्स एज अ नेचुरल ब्रिज फॉर अस।
2: पनामा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्राकृतिक सेतु और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। पनामा नहर के कारण यहाँ की लॉजिस्टिक अवसंरचना विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। हम शिक्षा, छात्रवृत्ति, औषधि उद्योग, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में आपके सहयोग और साझेदारी की रुचि की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
0: श्री जयशंकर ने बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट तथा देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 1 भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। निर्वाचन आयोग आज कोलकाता में डाक मतपत्र प्रणाली को अधिक समावेशी, सुरक्षित और सुलभ बनाने पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सभी 24 चुनावी जिलों के चुनाव अधिकारी, साथ ही भारत और कई अन्य देशों के चुनाव प्रशासक, नीति निर्माता, शिक्षाविद और चुनाव विशेषज्ञ शामिल होंगे। चर्चा का मुख्य विषय पोस्टल बैलेट और विशेष मतदान व्यवस्थाओं को ज्यादा समावेशी, सुलभ और सुरक्षित बनाने के तरीकों पर होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्य चुनाव अधिकारी नीलम मीना इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम में पोस्टल बैलेट, चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने, धोखा धड़ी रोकना, ऑडिट सिस्टम, कानूनी ढांचे, टेक्नोलॉजी पर आधारित विशेष वोटिंग सिस्टम और रिमोट वोटिंग के भविष्य जैसे विषयों पर सत्र होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सत्र के दौरान नेपाल, अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना और अन्य देशों के चुनाव विशेषज्ञ वर्चुअली अपने अनुभव साझा करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय है और कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों में मूसलाधार

0: लगातार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
1: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही मानसूनी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भूस्खलन के कारण अनेक संपर्क सड़कें अवरुद्ध हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में बिजली और पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। प्रभावित इलाकों में बहाली का कार्य जारी है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर जिलों में सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने तथा नदियों, नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उधर जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी नई घटनाओं में एक महिला और उसके दो बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई है। इससे पिछले 3 दिनों में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दिन के दौरान मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। सिक्किम के नामची जिले के समरडुंग में एनएचपीसी जल विद्युत परियोजना की बन रही सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव अभियान जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ये घटना कल दोपहर दक्षिण सिक्किम के समरडुंग में एनएचपीसी प्रोजेक्ट पर घटी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों को तुरंत ही बचाव कार्यों में लगाया गया है, लेकिन गैस लीक होने के कारण बचाव दल शुरुआत में घटना स्थल तक नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि सभी की कोशिशों से अब तक 8 शव बरामद किए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि भूस्खलन के कारण बन रही सुरंग को नुकसान पहुंचा है, लेकिन असली वजह अब तक नहीं पता चल पाया है। बचाव दल फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिनमें मजदूर, एनएचपीसी के अधिकारी और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म के कर्मचारी शामिल हैं। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों में व्यापक सहयोग है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाल ही में जॉर्डन में 2 अमरीकी सैनिकों और इराक में 1 सैनिक के मारे जाने के बाद उनकी ये चेतावनी आई है। इस बीच अमरीकी सेना ने आज ईरान के खिलाफ नए हमलों की शुरुआत की है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस सैन्य क्षमताओं को और कमज़ोर करना है, जिनका इस्तेमाल होर्मूज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाज़ों पर हमले के लिए किया जाता है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि उसने ईरानी प्रांतों पर अमरीकी हमलों के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों के 3 दौर के जरिए बहरीन और कुवैत में अमरीकी संपत्तियों और ठिकानों पर तेज प्रहार किए हैं। चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु करेंगी। महिला सिंगल्स के पहले दौर में सिंधु का सामना उन्नति हुडा से होगा। देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स में खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय चुनौती पेश करेंगे। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अंश करुणन भारत के खिलाड़ी हैं। वहीं ओलंपियन तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला, रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे मिक्स्ड डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। महिला डबल्स में भारत की कोई भी खिलाड़ी नहीं है। और हॉकी में FIH यूथ 5S एशियाई चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला सब जूनियर टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। ओमान के मस्कत में खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान को 8-3 से हराया। भारतीय पुरुष टीम ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 7-3 से शिकस्त दी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: राजधानी दिल्ली से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपने मुख्य पृष्ठ पर लिखा है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीति ना हो, SIT के पुनर्गठन की संभावना तलाशें। हिंदुस्तान ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, चढ़ावा चोरी की जांच नई SIT करे। दिल्ली में कल हुए प्रदर्शन को भी अधिकतर अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स

0: से लिखता है, संसद मार्च में झड़प, सरकार से बात, आंदोलन जारी। राजस्थान पत्रिका ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और सीजेपी प्रतिनिधियों की मुलाकात का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, सरकार से आश्वासन के बाद दीपके ने अनशन तोड़ा, 100 प्रदर्शनकारी घायल। अमर उजाला ने संपादकीय में इसी खबर का उल्लेख किया है, संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनौती का संकेत है, जिसमें संवाद का स्थान धीरे धीरे टकराव लेता जा रहा है। ये निर्विवाद है कि संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार देता है। लोकतंत्र की मजबूती भी इसी में है कि असहमति को स्थान मिले और सरकारें जन भावनाओं के प्रति संवेदनशील हों, लेकिन ये भी उतना ही आवश्यक है कि प्रदर्शन संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर हो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, एथेनॉल से कार ही नहीं चलेगी, चूल्हा भी जलेगा। एलपीजी के अलावा एथेनॉल को रसोई ईंधन का विकल्प बनाने की तैयारी, सितंबर तक नीति का मसौदा तैयार कर सकती है सरकार।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिलियानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल, भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi to address NDA Parliamentary Party meeting at Parliament House this morning. President Draupadi Murmu to hold talks with a North Macedonian counterpart in Skopje today. 4 Indians killed and 1 critically injured in attack on commercial vessel near Odessa port in Ukraine. India condemns attack on the ship. West Bengal government hikes monthly pension for senior citizens, widows and specially abled persons in the state. U.S. launches fresh strikes on Iran as President Donald Trump warns of massive retaliation, and PV Sindhu to lead India's challenge at the China Open Badminton tournament beginning today. The National Democratic Alliance NDA Parliamentary Party's weekly strategy meeting, now known as Mangal Milan, will be held in the Parliament House this morning. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to address the meeting. The meetings are traditionally held on Tuesdays during Parliament sessions with an intent to demonstrate complete alliance unity. NDA alliance partners will pass a congratulatory motion during the meeting, honouring Mr. Modi for becoming the longest serving elected Prime Minister of India. President Draupadi Murmu will hold talks with her North Macedonian counterpart Gordana Siljanovska Davkova in Skopje today. President Murmu is also scheduled to meet Prime Minister Hristiyan Miskosti and Speaker of the Assembly Afrim Gashi and address the Parliament. She will also address the India-North Macedonia Business Forum. More from a correspondent.
3: President Murmu arrived in North Macedonia last night on a two-day state visit as part of her three-nation tour to Moldova, North Macedonia and Romania. She is the first Indian president to visit North Macedonia. The visit reflects the importance India attaches to strengthening bilateral ties with the three countries and its engagement with wider Eastern European region. Both sides have shown keen interest in deepening economic ties in priority sectors such as agriculture, pharmaceuticals, science and technology, information technology, and IT-enabled services. North Macedonia is a landlocked country in southeastern Europe. The Indian community in the country is very small, with most members working in the IT sector, teaching at universities, or serving as executives in multinational companies. With Subhashree Mahapatra, this is Yashasvi Kiryal for Akashvani News, Delhi.
2: India condemned the attack on the vessel MV Golden Leo while departing the port of Odessa in Ukraine. External Affairs Ministry said 4 Indian nationals have tragically lost their lives while 1 is hospitalized in a critical condition. The ministry said that at the time of the incident, there were 17 crew members on board, including 5 Indian nationals. The ministry has reiterated that targeting

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में एनडीए पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग से खिताब करने वाले हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपियाई में शिमाली मकदूनिया के अपनी हमनसब से बातचीत करेंगी। यूक्रेन में ओदेसी बंदरगाह के नज़दीक कमर्शियल बहरी जहाज पर हमले में 4 भारतीय शहरियों की मौत हो गई जबकि एक शदीद तौर पर जख्मी हुआ। भारत ने बहरी जहाज पर हमले की मजम्मत की है। मगरबी बंगाल सरकार ने रियासत में बुजुर्ग शहरियों, बेवाओं और दिव्यांगजनों के लिए माहाना पेंशन में इजाफा कर दिया है। अमेरिका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़बरदस्त जवाबी कार्रवाई का इंतबाह दिया है। और चांगजू में आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु भारतीय चैलेंज की क़यादत करेंगी। अब खबरें तफसील से। कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की पार्लिमानी पार्टी की हिकमत अमली से मुतालिक हफ्तावार मीटिंग आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में होने वाली है जिसे अब मंगल मिलन कहा जाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस मीटिंग से खिताब करेंगे। इस तरह की मीटिंग पार्लियामेंट इजलास के दौरान रिवायती तौर पर हर मंगल को हुआ करती है जिसका मकसद एनडीए के मुकम्मल इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। एनडीए इत्तेहाद में शामिल पार्टियां इस मीटिंग के दौरान सबसे तवील अरसे तक अपने ओहदे पर फाइज रहने वाले मुंतखब वजीर आजम बनने पर जनाब मोदी की इज्जत अफजाई के लिए मुबारकबाद से मुतालिक एक तहरीक मंजूर करेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपेई में शिमाली मकदूनिया की अपनी हमनसब गोर्डाना, सिलजानो, वस्का, दाओकोवा के साथ बातचीत करेंगी। मोहतरमा मुर्मू वजीर आजम क्रिस्टीजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर अफरीम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। वो शिमाली मकदूनिया के पार्लियामेंट और भारत शिमाली मकदूनिया कारोबारी फोरम से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया तीन मुल्कों मोलदोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के दौरे के तहत कल रात 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर शिमाली मकदूनिया पहुंची। ये किसी भारतीय सदर जमहूरिया का शिमाली मकदूनिया का पहला दौरा है। उनका ये दौरा मस्कूरा तीनों मुल्कों के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और मशरकी यूरोप के वसी खित्ते के साथ भारत के रिश्तों को फरोग देने की अहमियत को उजागर करता है। दोनों मुल्कों ने ज़रात, दवासाजी, साइंस और टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी से वाबस्ता खिदमात जैसे तरजीही शोबों में इकतसादी ताउन को मजीद वसअत देने में गहरी दिलचस्पी जाहिर की है। शिमाली मकदूनिया जनूब मशरकी यूरोप का चारों तरफ से खुश्की से घिरा मुल्क है। यहाँ भारतीय बिरादरी की तादाद बहुत कम है और ज़्यादातर भारतीय अफराद आईटी के शोबों, यूनिवर्सिटियों में तदरीस या कसीर मुल्की कंपनियों में आला उहदों पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। भारत ने यूक्रेन में ओदेसा बंदरगाह से रवाना होते वक्त बहरी जहाज MV गोल्डन लियो पर हमले की मजम्मत की है। वजारत खारजा ने कहा है कि इस वाकये में 4 भारतीय शहरियों की मौत हो गई जबकि एक शख्स को नाजुक हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वजारत के मुताबिक जब ये वाकया पेश आया तो उस वक्त इस बहरी जहाज में 5 भारतीय शहरियों समेत अमले के 17 अहलकार सवार थे। वजारत खारजा ने ये बात दोहराई है कि कमर्शियल बहरी जहाज़ों को निशाना बनाना और बेकसूर सिविलियन अफराद पर मुश्तमिल अमले के अहलकारों की जान खतरे में डालना निज बहरी

0: ख्याल है कि चट्टानों के टुकड़े गिरने की वजह से ये सुरंग ढह गई थी। मुख्तलिफ एजेंसियां बचाव और इमदादी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: जनूबी सिक्किम में समरदुंग में कल NHPC प्रोजेक्ट के मकाम पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया। NDRF, SDRF और दीगर एजेंसियों को फौरी तौर पर बचाव मिशन पर लगाया गया। गैस के रिसाव की वजह से शुरू में इमदादी टीमें वहां नहीं पहुंच सकी। अलबत्ता इमदादी टीमों ने तालमेल के साथ कोशिश करते हुए 8 लाशें बाहर निकाल ली हैं। इमदादी टीमें वहां फंसे हुए अफराद को बाहिफाजत बाहर निकालने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही हैं। इनमें कारकुन, NHPC के अहलकार और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म के मुलाजमीन शामिल हैं। गंगटोक से मानस प्रतिम शर्मा के रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: हिमाचल प्रदेश के बेशतर हिस्सों में मानसून सरगर्म है और कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। शिमला के मौसमियाती मरकज़ ने आज रियासत के 5 ज़िलों में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनज़र रेड अलर्ट जारी किया है। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून की बारिश लगातार होने से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। चट्टानों के टुकड़े गिरने के वजह से कई राबता सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि कुछ इलाकों में बिजली और पीने के पानी की सप्लाई में रुकावट पड़ गई है। बहाली का काम जारी है। शिमला के मौसमियाती मरकज ने कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिले में आज शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। एहतियाती इकदाम के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर में सभी सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रहेंगे। इंतजामिया ने लोगों और सयाहों पर जोर दिया है कि वो गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
0: भारतीय मौसमियात महकमे ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद के बाज़ हिस्सों में बहुत तेज़ बारिश होने की पेशगोई की है। इधर दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, शिमाली मशरकी भारत के कुछ हिस्सों, मशरकी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी औसत से लेकर शदीद बारिश होने का इम्कान है। नई दिल्ली इलाके में कल एक एहतजाज के पुरतशद्दुद रुख इख्तियार करने के बाद 118 से ज़्यादा पुलिस अहलकार जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में पुलिस के स्पेशल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के उहदों पर फायज सीनियर अफसरान भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि एहतजाज के दौरान मुजाहरीन बेकाबू हो गए और उन्होंने जारहाना और पुरतशद्दुद रवैया इख्तियार कर लिया। कई बार की तंबीह और कानूनी हिदायत के बावजूद उन्होंने मुंतशिर होने से इनकार किया और इलाके में आयद इम्तनाई अहकामात की खिलाफ वर्जी की। दिल्ली पुलिस ने कहा कि मुजाहरीन ने पुलिस अहलकारों पर हमला किया, पुलिस और दीगर सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया और तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया, जिससे अमनो अमान को संगीन खतरा लाहिक हुआ। दिल्ली पुलिस ने मजीद बताया कि जख्मी पुलिस अहलकारों का तिब्बी और कानूनी जाँच जारी है। अमरीकी फोर्सेज ने ईरान के खिलाफ फिर हमले किए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अमरीका की मरकजी कमान ने कहा है कि ये हमले ईरान की फौजी सलाहियत को मजीद कमज़ोर करने के मकसद से किए गए हैं, जिसका इस्तेमाल वो आबनाए हुरमुज में कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर हमले करने के लिए करता है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहते हुए ईरान को ज़बरदस्त इंतकामी कार्रवाई की वार्निंग दी है कि ईरान को कई गुना भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। 3 अमरीकी फौजियों की हालिया हलाकत के तनाजुर में सदर ट्रंप ने यह तंबीह की है। भारत की सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दस्ते की क्यादत करेंगी। ख्वातीन के सिंगल्स मुकाबलों के पहले राउंड में आज पीवी सिंधु का मुकाबला अपनी हमवतन खिलाड़ी उन्नति हुडा से होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
2: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने कल मानसून इजलास के पहले दिन कार्रवाई शुरू होने से कबल मीडिया से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिताब को अहमियत के साथ शाये किया है, जिसमें वजीर आजम ने कहा कि बहस मुबाहसे में दलील और सच्चाई होनी चाहिए। साथ ही वजीर आजम ने पार्लियामेंट में मुल्क के मफाद के लिए काम करने की अपील की। अखबार की एक अहम सुर्खी है, नई दिल्ली में मुजाहिरीन के साथ मरकजी वजीर JP नड्डा की बातचीत से मुतालिक है। मुजाहिरीन की जानिब से सरकार को अपनी मांगों के लिए मेमोरेंडम पेश किया गया। रोजनामा इनकलाब ने ईरान के मौजूदा हालात वाकयात के तनाजुर में भारतीय शहरियों के लिए जारी नई एडवाइजरी से मुतालिक खबर को नुमाया।

0: क्या है। खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में एनडीए पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग से खिताब करने वाले हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपेई में शिमाली मकदूनिया के अकिए अपनी हम मनसब से बातचीत करेंगी। यूक्रेन में ओदेसा बंदरगाह के नज़दीक कमर्शियल बहरी जहाज पर हमले में 4 भारतीय शहरियों की मौत हो गई जबकि एक शदीद तौर पर जख्मी हुआ। भारत ने बहरी जहाज पर हमले की मजम्मत की है। मगरबी बंगाल सरकार ने रियासत में बुजुर्ग शहरियों, बेवाओं और दिव्यांगजनों के लिए माहाना पेंशन में इजाफा कर दिया है। अमेरिका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई का इंतबाह दिया है। और चांगजू में आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु भारतीय चैलेंज की क्यादत करेंगी। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप समाप्त कर रहे हैं। आप इस विशेष प्रसारण को आकाशवाणी श्रीनगर के एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के आराधना चैनल, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स तथा डीटीएच के माध्यम से सुन रहे हैं। श्रोताओं, हम लगातार आप तक जानकारियाँ पहुँचा रहे हैं, मौसम की वर्तमान स्थिति पहुंचा रहे हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति को हमने सुना और आगे भी हम आप तक निरंतर और जानकारियां पहुंचाते रहेंगे। आप इस विशेष प्रसारण को सुनते रहिए।

0: धन्यवाद आपका।
1: जी रिजवान साहब, बताइए बालतल बेस कैंप में इस समय क्या स्थिति है, मौसम कैसा है और श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है?
0: अशफाक, जैसा कि आप जानते हैं, मौसम विभाग के अनुसार घाटी में भारी वर्षा की जो संभावना जताई है और इस पेशनगोई के मुताबिक पूरी वादी में भारी वर्षा आज भी हुई है और इस वक्त भी हो रही है गांधरबल जिले के बहुत सारे इलाकों में। और अगर हम बालतल क्षेत्र की बात करेंगे तो बालतल के पूरे क्षेत्र में वह मौसम का वातावरण जो है वो अबर आलूद है। आकाश पे बादल, घने बादल छाए हुए हैं और सुबह सवेरे वर्षा भी हुई है, बीच बीच में भारी वर्षा हो रही है और कभी कभार हल्की हल्की वर्षा भी होती रहती है। इस तरह बादल के पूरे क्षेत्र में जो मौसम है वो अबर आलूद है। तो इस वातावरण के बीच आज किसी भी यात्री को पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि गुज़श्ता कुछ दिनों के दौरान जो आज तीसरा दिन है, वो तीसरे दिन जो तीर्थ यात्रा है उसको बाज़ाब्ता तौर स्थगित कर दिया गया है। बालतक के मुख्य मार्ग से भी, तो यानी दोनों रास्तों से इसको निलंबित, यात्रा जो है वो निलंबित कर दी गई है। इस दौरान किसी भी यात्री को पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान एक दो मकामात पर, चाहे पंचतरणी हो या बालतल बेस कैंप हो या नूनवन बेस कैंप हो, वहां पे कुछ यात्री जो पहले ही पहुंचे थे उनको पवित्र गुफा की ओर रवाना किया गया है, धीरे धीरे एक के बाद धीरे, लेकिन वो शिवलिंगम का दर्शन करके सुरक्षित वापस बालतल बेस कैंप पहुंचे। अगर हम बात करेंगे बीते रात 11 बजे तक जो सरकारी आंकड़े हैं उनके अनुसार 6,033 श्रद्धालु शिवलिंगम का दर्शन करके सुरक्षित वापस बालतल बेस कैंप पहुंचे, जिनमें 3,870 पुरुष, 1,872 महिलाएं, 110 बालक बालिका, 20 साधु, 4 साधियां एवं 157 सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं जो शिवलिंगम का दर्शन करके वापस यात्री सुरक्षित बालतल पहुंचे हैं, उन यात्रियों को शायद मुख्तलिफ वाहनों में आज जम्मू भगवती नगर बेस कैंप की तरफ जाने की अनुमति दी जाएगी। तो सुबह सवेरे आज किसी भी यात्री को पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं जो हैं वो हर पड़ाव पर उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी हैं, जिसकी निगरानी बाजाब्ता तौर बालतल के मुख्य मार्ग से यहाँ के डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जतिन किशोर और सुरक्षा की व्यवस्थाएं जो हैं उन पे कड़ी नजर रखी गई है। जो यहाँ के SSP गांधरबल है सुधांशु
1: जी,
0: दामा, वो बाजाब्ता तौर दोनों इसकी निगरानी कर रहे हैं और बालतल के पूरे क्षेत्र में जो जल अफसरान हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, मुतहरिक रखे गए हैं दीगर अधिकारियों को भी, ताकि श्रद्धालु जो वहां पे आ रहे हैं उनको किसी प्रकार कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। लेकिन आज हम अपने श्रोताओं को ये कहना चाहते हैं कि बालतल के बेस कैंप में या मुख्तलिफ पड़ाव जो है वहां पे आज कोई यात्री नहीं है, क्योंकि जम्मू भगवती नगर बेस कैंप से बीते 2 दिनों के दौरान किसी भी यात्री को घाटी आने की इजाजत नहीं दी गई है। लिहाजा बिल्कुल मौसम अबर आलूद है, बादल आकाश पे जो बादल छाए हुए हैं, घने बादल छाए हुए हैं और वर्षा होने की संभावना भी है और बीच बीच में वर्षा हो भी हो रही है। लिहाजा यात्रियों की सुरक्षा जो है वो प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है, तो उनकी सुरक्षा को लेकर किसी भी यात्री को फिलहाल गुफा की ओर जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। जी
1: जी रिजवान साहब, प्रशासन द्वारा क्या कुछ ताजा या अतिरिक्त ऐसी जानकारी है इस हवाले से कि यात्रा को फिर से सामान्य किया जाए?
0: प्रशासन के द्वारा फिलहाल यात्रियों को बीते 2 दिनों के दौरान यही सूचना बार बार दी जाती थी कि अगर कहीं भी कोई यात्री है तो फिलहाल बेस कैंप या हमारे यात्रा रूट जो श्रीनगर कारगिल राजमार्ग है, इस पे दो पड़ाव अहम महत्वपूर्ण दो पड़ाव है, जिनमें ट्रांजिट कैंप शादीपोरा और ट्रांजिट कैंप महंगाम। यहाँ पे भी अफसरान जो है, जिला प्रशासन के बड़े अफसरा है। अगर हम ट्रांजिट कैंप महंगाम की बात करेंगे तो यहाँ सुपर इंटेंडेंट पुलिस आबिद रशीद मीर जो बाजाब्ता तौर इसकी निगरानी कर रहे हैं, और उनके साथ जो यात्रा नोडल अफसर गांधरबल है, जो ACR गांधरबल भी हैं, डॉक्टर शेख सलाहुद्दीन, और ये दोनों अफसरान जो हैं वो निगरानी कर रहे हैं पूरे ट्रांजिट कैंप की। तो 24 घंटे ये खुद ही यहाँ अलर्ट रहते हैं। हालांकि वो श्रीनगर कारगिल राजमार्ग पर खुद खड़े हैं और देखते हैं कि बाजाब्ता तौर किस तरह का वातावरण यहाँ पे है और यात्री कब आते हैं, कब जाते हैं। इससे पहले भी हम अपने श्रोताओं को बार बार ये सूचना साझा करते हैं, इस सूचना से साझा करते हैं कि जो भी 5 बजे के बाद ट्रेंजर कैंप मनीगाम या ट्रेंजर कैंप शादीपुरा यात्री पहुंचेंगे उन्हें पवित्र गुफा की ओर या बालतल बेस कैंप की ओर जाने की अनुमति नहीं दी जाती है, या दर्शन करके जो वापस यात्री ट्रेंजर कैंप मनीगाम या ट्रेंजर कैंप शादीपुरा शाम 5 बजे के बाद पहुंचते हैं उनको जम्मू भगवती नगर बेस कैंप की तरफ जाने की अनुमति नहीं दी जाती है, बल्कि इन यात्रियों को रात भर इन्हीं दो ट्रांजिट कैंपों में कयाम करना पड़ता है। और इन दोनों ट्रांजिट कैंपों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं कि जैसे हमने बताया, जिसकी निगरानी बाजाबता तौर SP आबिद रशीद मीर कर रहे हैं, और इसके साथ साथ यात्रियों की सहायता के लिए उच्चतर की सुविधाएं इनमें उपलब्ध रखी गई है, जिनमें भोजन, शौचालय, गर्म पानी और पीने के लिए साफ पानी, रिहाइश के लिए, विश्राम के लिए उम्दा बेडिंग का भी इंतजाम रखा गया है। तो यहाँ अगर यहाँ का वातावरण देखकर, यहाँ की सुंदरता देखकर यात्री बिल्कुल झूम उठते हैं। अगर हम खासकर तौर बात करेंगे, यहाँ शाम के वक्त जो यहाँ की सुंदरता यात्री देखते हैं, नाले सिंध की सुंदरता देखते हैं ट्रांजिट का मनगाम में, तो ये देखकर वो झूम उठते हैं और उनका दिल नहीं करता है कि वो वापस जाएंगे। वो बार बार यही कहते हैं कि धरती जो है ये स्वर्ग है और यहाँ से वापस जाने को दिल नहीं करता है, लेकिन वो तीर्थ यात्रा पे आए हैं, लिहाजा यहाँ से उनको तीर्थ यात्रा के लिए बाजाबता तौर रात्रि विश्राम के बाद सुबह सवेरे रवाना किया जाता है। तो यात्रा पड़ाव की बात हम अगर करेंगे,
1: जी
0: पूरे कारगिल राजमार्ग पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं और साथ ही जो व्यवस्थाएं हैं हर जगह उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी गई हैं। और हम ये भी बताते चले अपने यात्रियों को कि बालतल मुख्य मार्ग से यानी दुमेल कंट्रोल गेट से पवित्र गुफा तक उनका जो 14 किलोमीटर का कठिन रास्ता ऊंचे पर्वतों के बीच तय करना पड़ता है और इस दौरान उन्हें ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, तो वो कमी महसूस करने के लिए चिकित्सा विभाग ने हर पड़ाव पर चिकित्सा केंद्र कायम किए हैं।

0: ताकि यात्रियों को किसी प्रकार कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े और उन्हें जहां कहीं भी ऑक्सीजन की कमी महसूस हो तो उन्हें बाजाब्ता तौर वाफिर मकदार में ऑक्सीजन फराहम किया जाता है। इस तरह अगर हम कहेंगे व्यवस्थाओं को लेकर, व्यवस्थाएं जो है उसमें रोज बरोज इजाफा किया जाता है और जो डिस्ट्रिक्ट अफसरान हैं वो बाज़ाब्ता तौर इसकी निगरानी करें और सूबाई इंतजामिया के सिविल और सुरक्षा के आला अफसरान बालतल बेस कैंप का दौरा करते हैं और व्यवस्थाओं का बाज़ाब्ता तौर जायजा लेते रहते हैं, जिसकी पूरी निगरानी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा कर रहे हैं। और इस तरह पूरे गांधरबल जिले में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं और जो ही यात्रा कॉन्वॉय श्रीनगर कारगिल राजमार्ग पर आगे बढ़ती है तो इस दौरान यात्रा के दाएं बाएं या आगे पीछे किसी भी प्राइवेट या सरकारी वाहन को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती है। हर चौराहे पर, हर मोड़ पर जो सुरक्षा कर्मी है वो चौको चौबंद रखे गए हैं। और इसके साथ साथ अगर वर्षा के दौरान
1: जी
0: कोई भी आफत आए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो इस सूरत हाल से निमटने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, वॉलंटियर्स, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के अलावा अन्य व्यवस्था एजेंसियों के अधिकारी जो है उनको चाको चौबंद रखा गया है। और इस तरह जो यात्रा के हवाले से हम बात करेंगे तो बेहतरीन सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं और व्यवस्थाओं को लेकर यात्री भी इस वर्ष संतुष्ट हैं। जी अशफाक
1: जी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद रहीम रिजवान साहब। यानी प्रशासन इस बार पूरी तरह से तैयार है, आपके हम बहुत बहुत आभारी हैं। आपने वर्तमान स्थिति और प्रशासन की तैयारियों से श्रोताओं का अवगत कराया।
0: धन्यवाद आपका भी।
1: जी श्रोताओं, आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर से श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण। श्रोताओं, आपको एक बार फिर बता दें कि लगातार बारिश और मौसम की वर्तमान स्थिति को देखते हुए श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 फिलहाल अस्थायी रूप से स्थगित है। प्रशासन लगातार स्थिति की समीक्षा कर रही है और जैसे ही कोई आधिकारिक निर्णय सामने आएगा हम उसे तुरंत आप तक पहुंचाएंगे। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि वह अपने निर्धारित आवास या बेस कैंप में ही बने रहें, बिना अधिक अनुमति या यात्रा मार्ग की ओर रवाना न हो और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। इस विशेष प्रसारण को आप सुनते रहें और बने रहिए हमारे साथ।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप समाप्त कर रहे हैं। मैं हूं अशफाक और आप इस विशेष प्रसारण को आकाशवाणी श्रीनगर के एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के आराधना चैनल तथा डीटीएच के माध्यम से सुन रहे हैं। लगातार हम आप तक प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और हमने अभी तक पहलगाम की स्थिति आप तक पहुंचाई, रामबन से राष्ट्रीय राजमार्ग की जानकारी आप तक पहुंचाई। अब जरा रुक करते हैं श्रीनगर पांथा चौक ट्रांजिट कैंप की ओर। यात्रा के दौरान आप सभी जानते हैं कि ये कैंप श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। फिलहाल यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित है, लेकिन पांथा चौक में प्रशासन की तैयारियों और श्रद्धालुओं के लिए की जा रही व्यवस्थाओं पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और इन सभी पहलुओं पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इमरान नायकू साहब इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। इमरान साहब, आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है।
1: बहुत शुक्रिया।
0: बताइए, पांथा चौक ट्रांजिट कैंप में इस समय क्या स्थिति है, मौसम को देखते हुए प्रशासन की क्या तैयारियां हैं और श्रद्धालुओं के लिए की गई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं क्या?
1: देखिए, जैसे कि आपने खुद इस श्रीनगर के पांथा चौक ट्रांजिट कैंप के मुतालिक कहा है कि यह बड़ा इम्पोर्टेंट ट्रांजिट कैंप है
0: जी।
1: बिल्कुल, हर साल की तरह इस साल भी श्रीनगर के पांथा चौक ट्रांजिट कैंप में अमरनाथ जी यात्रियों के लिए हर तरह की सुविधाएं रखी गई है। और सबसे पहले कि आज चूंकि मौसम विभाग की तरफ से पहले ही कहा गया है कि जो 72 घंटे होंगे 72 आवर्स बड़े इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि इसमें हैवी रेनफॉल की जो है प्रेडिक्शन की गई है। लेकिन श्रीनगर में जैसे कल सुबह 2-2.5 घंटे तक काफी तेज मौसादार बारिश हुई, बाद में मौसम साफ रहा, लेकिन आज रात भी मौसम बिल्कुल श्रीनगर में साजगार रहा, साफ रहा, लेकिन अभी हल्की सी जो बारिश है वो शहर में शुरू हुई है और बादल भी छाए हुए हैं। और जहां तक श्रीनगर के पांथा चौक ट्रांजिट कैंप में अमरनाथ जी यात्रियों की सुविधाओं का ताल्लुक है, जैसे कि हम पहले दिन से इस पर अपडेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की तरफ से इस ट्रांजिट कैंप में हर तरह की जो सुविधाएं हैं वो अमरनाथ जी यात्रियों के लिए रखी गई है। वो चाहे यहाँ लंगर्स हो, वो यहाँ कम्युनिटी किचन हो, वो यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हो, वो यहाँ कूलिंग सिस्टम हो, और इसके अलावा हम देखें तो यहाँ फर्स्ट एड या मेडिकल की जो फैसिलिटी है वो रखी गई है। और यहाँ अमरनाथ जी यात्रियों के लिए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट या जो प्रशासन के जो लोग हैं वो यहाँ 24/7 अपनी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट के साथ साथ जो श्राइन बोर्ड है उनके यहाँ पे ऑफिशियल्स हैं, उनके यहाँ काउंटर सेटअप किए गए हैं, एक हेल्प डेस्क यहाँ पे बनाया गया है, उसको एस्टैब्लिश किया गया है, जिसके जिसमें अगर किसी यात्री को कोई असिस्टेंस की जरूरत हो, किसी हेल्प की जरूरत हो, तो इस हेल्प डेस्क पे वो जाके अपनी जो है हेल्प हासिल कर सकता है, ले सकता है। इसके अलावा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं और साथ साथ जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, वॉलंटियर्स है, वो अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सिक्योरिटी का जहां तक ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, ट्रैफिक पुलिस और जितनी भी बाकी सिक्योरिटी है वो यहां पे तैनात है। सीसीटीवी कैमरास के जरिए से इस पूरी यात्रा ट्रांजिट कैंप को मॉनिटर किया जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि अभी तक जो यात्रा हुई है और जो यात्री यहाँ श्रीनगर के ट्रांजिट कैंप में पहुंचे हैं उन्होंने यात्रा भी की है और यात्रा के साथ साथ उन्होंने यहाँ एक अच्छा एक्सपीरियंस भी हासिल किया है। जैसा कि मैं पहले दिन से यात्रियों से बात कर रहा हूँ जो कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ आ रहे हैं और यात्रा की गरज से और यहाँ लोगों से मिल रहे हैं, यहाँ सर्विस प्रोवाइडर्स से, वॉलंटियर्स से, लोकल से मिल रहे हैं। और अच्छी बात यह भी है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जो रिसेंटली उन्होंने यहाँ विजिट किया था और नुनवान बेस कैंप का उन्होंने विजिट किया था, तो वहां पे भी उन्होंने ये यात्रियों से रिक्वेस्ट की थी कि यात्रा के साथ साथ वो कश्मीर का जो लोकल हैंडीक्राफ्ट है इसे भी खरीदें। और हम देख रहे हैं कि जहां जहां स्टॉल्स लगाए गए हैं यात्री कश्मीर का

0: खराब होने की वजह से आज यात्रा सस्पेंड है, लेकिन
1: जी
0: यात्री आएंगे और मौसम कल बेहतर होने की तवक्कात है, एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन यात्रियों के लिए यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, हर तरह की सुविधाएं श्रीनगर के पांथा चौक ट्रांजिट कैब में रखी गई है। इसके अलावा यहाँ श्रीनगर में जो लोक भवन है जहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बैठते हैं, वहां पर भी श्राइन बोर्ड की तरफ से एक 24/7 जो सेल है वो मॉनिटरिंग सेल एस्टेब्लिश किया गया है और पूरी यात्रा पर वहां से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। ना सिर्फ यहाँ श्रीनगर के लिए बल्कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रांजिट कैंप से गुफा से लेके पूरे जम्मू के भगवती नगर बेस
1: बेस
0: कैंप
1: कैंप।
0: तक वहां से मॉनिटर किया जा रहा है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर HMT श्रीनगर में एस्टैब्लिश किया गया है, वहां से भी सारी यात्रा को मॉनिटर किया जा रहा है। और कुल मिला के प्रशासन का यही मानना है और जो डायरेक्शंस भी दी गई है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को कि अमरनाथ जी यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, उन्हें हर तरह की जो सुविधा है फैसिलिटीज है वो उनको प्रोवाइड की जाए। और जो हमने अभी तक यहाँ श्रीनगर में यात्रियों से बात की है, एक
1: जी
0: पॉजिटिव फीडबैक यात्रियों की तरफ से अभी तक मिला है।
1: बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए इमरान साहब। पांथा चौक ट्रांजिट कैंप से जो आप ये महत्वपूर्ण और विस्तारपूर्वक जानकारी हमारे साथ लगातार जानकारी हमारे साथ साझा करते हैं और हमारे श्रोताओं तक पहुंचाते रहते हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर प्रशासन की तरफ से कुछ भी और अपडेट्स मिलती है तो ज़रूर हमें उससे अवगत कराइएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, हमने जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पहलगाम बालतल और पांथा चौक से ग्राउंड रिपोर्ट्स के माध्यम से यात्रा की वर्तमान स्थिति को जाना। सभी रिपोर्टर्स के साथ यही सभी रिपोर्टर्स के अनुसार यही है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और स्थिति पर लगातार समीक्षा कर रहे हैं। एक बार फिर श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि वे धैर्य बनाए रखें, अपने निर्धारित कैंप्स में ही ठहरें और केवल श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड तथा प्रशासन द्वारा जारी अधिकृत सूचनाओं पर ही भरोसा करें। बने रहिए हमारे साथ।

0: श्रोताओ, श्री अमरनाथ यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप समाप्त कर रहे हैं। यात्रा से जुड़ी तमाम जानकारियां, ग्राउंड रिपोर्ट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल अब समय हो चला है समाचारों का। अगले क्रम में हम आकाशवाणी की प्राइमरी सर्विस से प्रसारित उर्दू समाचार रिले करेंगे।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं आबिदा अख्तर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिशों, अचानक आए सैलाब और चट्टाने खिसकने की वजह से पैदाशुदा सूरतहाल का तफसीली जायजा लिया। अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने डोडा जिले में दो कीमती इंसानी जानों के जियां पर गहरे दुख और सदमे का इजहार करते हुए सोगवारान के साथ ताजियत की है। एक और सोशल मीडिया पोस्ट में मनोज सिन्हा ने पुंछ में मूसलाधार बारिशों के नतीजे में 7 अफराद के जान बहक होने पर सख्त सदमे का इजहार किया है। उन्होंने जिला इंतजामिया को हिदायत दी है कि कुंभों को फौरी इमदाद फराहम की जानी चाहिए। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इंतजामिया को हिदायत दी है कि जम्मू कश्मीर में पिछले चंद दिनों से हुई मुसलसल बारिशों के नतीजे में पैदाशुदा सूरतहाल से निमटने के लिए बचाव और बहाली कार्रवाईयों में सुरत लाई जानी चाहिए। उन्होंने कल दिल्ली से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सैलाब से मुतासर अजला की ताजा तरीन सूरतहाल का जायजा लिया। वजीर आला ने आवाम के मालो जान को तहफ्फुज़ फराहम करने को तरजीह देने की हिदायत दी। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू ने मौजूदा मौसमी सूरतहाल के पेश नजर इम्कानी हालात से निमटने के लिए मुतल्लिका महकमों के माबेन करीबी तालमेल की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कल श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान मौसम से मुतल्लिक पेशगोई को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ महकमों की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर बड़गाम अथर आमिर खान ने जिले में मौसमी हालात के नतीजे में पैदा होने वाली इम्कानी सूरतहाल से निमटने के लिए मुतल्लिका महकमों को तैयारी की हालत में रहने की हिदायत दी है। बांडीपोरा की डिप्टी कमिश्नर इंदु कमल चिब ने भी कल जिले के हसास इलाकों का दौरा करके वहां नासाजगार मौसम से पैदा होने वाले इम्कानी हालात से निमटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर फजलुल हसीब ने कल श्रीनगर शहर खासकर पायेन इलाकों का दौरा करके वहां जमा हुए बारिश के पानी की निकासी के अमल का जायजा लिया। ये बात काबिल जिक्र है कि कल सुबह की मूसलाधार बारिशों के बाद शहर के बेशतर इलाके जैर आब आ गए थे। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए दरख्वास्तें जमा करने और कुरा अंदाजी की आखिरी तारीख में तवसी करके इसे 24 जुलाई तक बढ़ाया है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव अफसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया।
2: 2027 के लिए जो एप्लीकेशन का सिलसिला कल यानी 22 को बंद होना था, उसमें 4 दिन की तोसी दी गई, यानी अब 26 जुलाई तक जायज आजमीन अपनी एप्लीकेशन दरखास्त ऑनलाइन दे सकते हैं हज कमेटी की वेबसाइट पे या हज सुविधा ऐप के थ्रू हज का जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। जो प्रोसीजर है, यानी जो भी आजमीन जो एलिजिबल है जिनने हज कमेटी के थ्रू हज न किया हो वो हज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या जो आजमीन जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा है उन्हें एक कंपेनियन अपने साथ रखना है।
1: पंबच कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन के डायरेक्टर्स सुपर्णा सप्रू और गोपी सप्रू ने कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की और कल्चर से जुड़े कई मामलों पर उनके साथ तबादले ख्याल किया। इस दौरान सीनियर बीजेपी लीडर मुर्तजा अहमद खान ने एलजी से मुलाकात करके राजौरी और पुंछ में सैलाब से पैदाशुदा सूरतहाल के बारे में उन्हें जानकारी दी। बीजेपी यू डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी श्रीनगर तवाब एजाज ने भी एलजी के साथ मुलाकात की। कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लॉ के तालिब इल्मों पर मुश्तमिल एक वफद ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मुलाकात करके अपने मुतालबात की एक याददाश्त पेश की। एसकेआईसीसी श्रीनगर में चनार बुक फेस्टिवल जारी है। फेस्टिवल के चौथे दिन आज भी कई प्रोग्राम मुनक्कद हो रहे हैं। बड़ी तादाद में कुतुबीनी के शायकीन बुक फेस्टिवल से इस्तेफादा कर रहे हैं। मौसम से मुतालिक महकमे मौसमियात की पेशगोई के तनाजुर में श्री अमरनाथ जी यात्रा को आज भी मुअत्तल रखा गया है। हमारे कुलगाम के नुमाइंदे ने इतला दी है कि आज भी किसी भी यात्री को जम्मू से श्रीनगर आने की इजाजत नहीं होगी। यात्रा की बहाली का फैसला मौसम में बेहतरी आने के बाद ही लिया जाएगा। इस दौरान भारतीय महकमे मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में आज भारी बारिश की पेशगोई की है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर कल हुई बारिशों के नतीजे में कई मकामात पर पसियां गिराने के बावजूद आज शाहरा ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए खुली है। ताहम ड्राइवरों और मुसाफिरों को इंतहाई एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया है। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू ने एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे राजा आदिल हमीद का हवाला देकर खबर दी है कि शाहरा पर पसियां हटाने का काम जारी है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से शाहरा पर आज गैर जरूरी सफर करने से इज्तनाब करने की अपील की है। आखिर में दर्जे हरारत, श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 20 डिग्री सेल्सियस जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप समाप्त कर रहे हैं। आप इस विशेष प्रसारण को आकाशवाणी के एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के आराधना चैनल तथा डीटीएच के माध्यम से सुन रहे हैं। देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मौजूद श्रोता इन माध्यमों के जरिए हमारे इस विशेष प्रसारण से जुड़े हुए हैं। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 फिलहाल अस्थायी रूप से स्थगित है। आज सुबह से हमारे संवाददाताओं ने जम्मू और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, पहलगाम, बालतल और श्रीनगर के पांथाचुक ट्रांजिट कैंप से हमें वहां की वर्तमान स्थिति और व्यवस्थाओं की जानकारी दी है। अलग अलग स्थानों से मिली जानकारी के अनुसार प्रशासन और पुलिस लगातार स्थिति पर नजर बनाई हुई है और यात्रा से जुड़े बेस कैंप्स और ट्रांजिट कैंप्स में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। श्रद्धालुओं के ठहरने और अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए भी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। प्रशासन की ओर से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। यात्रा को लेकर जैसे ही कोई नई अतिरिक्त सूचना प्राप्त होगी, हम उसे तुरंत आप तक पहुँचाएंगे। इसी बीच सभी श्रद्धालुओं से हमारा एक बार फिर अनुरोध है कि वह धैर्य बनाए रखें और प्रशासन तथा सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का पालन करें। बिना अतिरिक्त अनुमति के यात्रा मार्ग की ओर ना बढ़ें। मौसम और यात्रा से जुड़ी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। आपकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए जहाँ भी आप ठहरे हुए हैं वहाँ प्रशासन के साथ सहयोग करें और यात्रा दोबारा शुरू होने से जुड़ी अधिक जानकारी का इंतजार करें। हम यही कामना करते हैं कि मौसम जल्द अनुकूल हो, सभी श्रद्धालु सुरक्षित और स्वस्थ रहें और यात्रा आगे भी सुखद और मंगलमय तरीके से चले। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 से जुड़ी हर जरूरी और अधिक जानकारी के साथ हम लगातार आपकी सेवा में उपस्थित हैं। बने रहिए आकाशवाणी के श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 के इस विशेष प्रसारण के साथ।

श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप समाप्त कर रहे हैं। आप इस विशेष प्रसारण को आकाशवाणी श्रीनगर के एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्स, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज ऑन एआईआर ऐप के आराधना चैनल तथा डीटीएच के माध्यम से भी समाप्त कर रहे हैं। श्रोताओं, हम लगातार आप तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचा रहे हैं। इस समय मौसम की स्थिति कैसी है, वो जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर द्वारा आज सुबह 6 बजे जारी की गई सेक्टर स्पेसिफिक नाउकास्ट के अनुसार पूर्वानुमान के मुताबिक जम्मू से बटोट, बटोट से अनंतनाग, पहलगाम रूट और बालतल रूट के अधिकांश हिस्सों में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ गरज चमक होने की संभावना है। मौसम विभाग ने मात्रा यार के कई सेक्टर्स के लिए अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश, गरज और बिजली चमकने की संभावना की चेतावनी भी जारी की है। इसलिए सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि वे पूरी सावधानी बरतें और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। श्रोताओं, यात्रा फिलहाल अस्थायी रूप से स्थगित है। ऐसे में सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि वे अपने निर्धारित बेस कैंप्स या ट्रांजिट कैंप्स में ही बने रहें, बिना अधिक अनुमति के यात्रा मार्ग की ओर रवाना न हों और किसी भी अफवाह पर ध्यान देने के बजाय केवल अधिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। जैसे ही मौसम या यात्रा की स्थिति में कोई नया अधिकृत बदलाव होगा, हम उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। आकाशवाणी का विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप समाप्त कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ।

ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे वहां का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज पे सख्त मनाही है और ऐसा करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन .com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड भोले बाबा के दर्शन पे जाते हुए आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने में हमेशा तत्पर रहेगा, इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो अपनी फिटनेस पे भरपूर ध्यान दीजिए। इसके लिए रोज के 4 से 5 किलोमीटर वॉक करें, साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम और योगा करिए, ताकि सफर के दौरान आप फिजिकली फिट रहे। ध्यान रखिए कि सफर खाली पेट बिल्कुल ना करें। भोले का नाम लें और बिना जल्दबाजी किए सफर आराम से करिए, ताकि आपके शरीर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन .com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करिए।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।
2: जी श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप समाप्त कर रहे हैं। मैं हूं अशफाक और आप हमारे इस विशेष प्रसारण को आकाशवाणी श्रीनगर के FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, OTT प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज ऑन AIR ऐप के आराधना चैनल तथा DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। श्रोताओं, कुछ जरूरी बातें श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आए हुए हमारे श्रद्धालुओं के लिए आप तक पहुंचाते हैं। छोटी छोटी सावधानियां यात्रा के दौरान आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। सभी श्रद्धालु अपना मोबाइल फोन पूरी तरह चार्ज रखा करें और अगर संभव हो तो अपने साथ पावर बैंक भी रखें। अपने परिवार या साथियों को समय समय पर अपनी स्थिति और आप कहाँ ठहरे हुए हैं इसकी जानकारी देते रहिए। अपने पास एक कागज पर अपना नाम लिखें, घर का पता लिखें, परिवार के किसी सदस्य का मोबाइल फोन नंबर या अपने साथ यात्रा कर रहे किसी व्यक्ति का संपर्क नंबर जरूरी लिख कर रखें। इमरजेंसी की स्थिति में ये छोटी छोटी सावधानी बहुत उपयोगी हो सकती है। अपना पहचान पत्र, यात्रा परमिट और RFID कार्ड भी हमेशा अपने पास रखें। RFID कार्ड को यात्रा के दौरान निर्देश के अनुसार पहने रखें और अपने ज़रूरी दस्तावेजों को भी सुरक्षित जगह पर रखा करें। अगर किसी भी तरह की मदद जरूरत हो तो अपने कैंप में मौजूद प्रशासन, पुलिस, सुरक्षा कर्मियों, मेडिकल टीम या आधिकारिक सहायतों कर्मियों के से संपर्क करें। किसी भी अनजान या बिना पुष्टि वाले जानकारी पर कभी भरोसा न करें। और सबसे ज़रूरी बात, अपने साथ यात्रा कर रहे लोगों का भी ख्याल रखें, उनका विशेष ध्यान रखें। आपकी सुरक्षा और सुविधा सबसे महत्वपूर्ण है। प्रशासन के साथ सहयोग करें, आधिकारिक निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित रहें। आइए जरा इस विशेष प्रसारण को आगे बढ़ाते हैं।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है।

0: इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
1: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम एक महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए

0: चित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहने, रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
1: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
0: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
1: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

ये कुछ जरूरी सूचना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का रास्ता ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे वहां का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज पे सख्त मनाही है और ऐसा करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड भोले बाबा के दर्शन पे जाते हुए आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने में हमेशा तत्पर रहेगा, इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो अपनी फिटनेस पे भरपूर ध्यान दीजिए। इसके लिए रोज के 4 से 5 किलोमीटर वॉक करें, साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम और योगा करिए, ताकि सफर के दौरान आप फिजिकली फिट रहे। ध्यान रखिए कि सफर खाली पेट बिल्कुल ना करें। भोले का नाम ले और बिना जल्दबाजी किए सफर आराम से करिए, ताकि आपके शरीर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करिए।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है, सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री

0: सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
1: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम एक महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।
2: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप समाप्त कर रहे हैं। मैं हूं अशफाक और आप इस विशेष प्रसारण को आकाशवाणी श्रीनगर के FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, OTT प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज ऑन AIR ऐप के आराधना चैनल तथा DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। यात्रा से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण जानकारी हम लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के दौरान प्रशासन और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए 24 घंटे काम करते हैं। बेस कैंप्स और ट्रांजिट कैंप्स में आवास, चिकित्सा, पीने का पानी, स्वच्छता और सुरक्षा की व्यवस्था लगातार सुनिश्चित की जाती है। विपरीत मौसम की स्थिति में भी सभी संबंधित विभाग पूरी सतर्क के साथ स्थिति पर नज़र बनाए रखे हैं ताकि किसी भी परिस्थिति में श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप समाप्त कर रहे हैं।

0: श्री अमरनाथ। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप समाप्त कर रहे हैं। श्रोताओं, आप इस विशेष प्रसारण को आकाशवाणी श्रीनगर के एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म वीव्स, न्यूज ऑन AIR ऐप के आराधना चैनल तथा DTH के माध्यम से सुन रहे हैं। श्रोताओं, एक जरूरी अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। ज्वाइंट पुलिस कंट्रोल रूम बालतल से मिली जानकारी के मुताबिक आज 21 जुलाई को बालतल बेस कैंप से जम्मू के लिए 18वीं डाउन कॉन्वॉय निकली है। इस कॉन्वॉय में कुल 1278 श्रद्धालु हैं। इनमें 671 पुरुष, 569 महिलाएं, 6 बालक, 40 साधु तथा 2 साध्वियां शामिल हैं। ये सभी श्रद्धालु कुल 38 छोटे बड़े वाहनों में जम्मू के लिए निकले हैं। पुलिस और प्रशासन की देखरेख में ये कॉन्वॉय सुरक्षित तरीके से जम्मू की ओर बढ़ रही है। श्रोताओं, आप जितने भी श्रद्धालु इस यात्रा पर हैं, जो वापस जा रहे हैं, उन श्रद्धालुओं से निवेदन है कि वह कॉन्वॉय के साथ ही चलें, पुलिस और सुरक्षा बलों के निर्देशों का पालन करें और बिना जरूरत रास्ते में कहीं ना रुकें। यात्रा से जुड़ी हर ताज़ा और आधिकारिक जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए आकाशवाणी के श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के इस विशेष प्रसारण के साथ।
1: श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड भोले बाबा के दर्शन पे जाते हुए आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने में हमेशा तत्पर रहेगा। इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो अपनी फिटनेस पे भरपूर ध्यान दीजिए। इसके लिए रोज के 4 से 5 किलोमीटर वॉक करें, साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम और योगा करिए ताकि सफर के दौरान आप फिजिकली फिट रहे। ध्यान रखिए कि सफर खाली पेट बिल्कुल ना करें। भोले का नाम ले और बिना जल्दबाजी किए सफर आराम से करिए ताकि आपके शरीर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करिए। श्री अमरनाथ जी यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ जरूरी सूचना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का रास्ता ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा

0: कुछ ना करे जिससे वहाँ का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज पे सख्त मनाही है और ऐसा करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें।
1: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
1: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। आप इस विशेष प्रसारण को आकाशवाणी श्रीनगर के एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्स, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्स, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के आराधना चैनल, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स तथा डीटीएच के माध्यम से भी सुन रहे हैं। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं है बल्कि आस्था, धैर्य और विश्वास का प्रतीक है। हर साल देश के विभिन्न हिस्सों से लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कश्मीर पहुंचते हैं। यात्रा के दौरान प्रशासन, सुरक्षा बल, डॉक्टर्स, वॉलंटियर्स और लंगर सेवा से जुड़े लोग मिलकर दिन रात श्रद्धालुओं की सेवा में लगे रहते हैं।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप समाप्त कर रहे हैं। आप इस विशेष प्रसारण को आकाशवाणी श्रीनगर के FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR ऐप के आराधना चैनल तथा DTH के माध्यम से भी समाप्त कर रहे हैं। बादल छा जाएं, रास्ते रुक जाएं, लेकिन आस्था का दीप कभी बुझ न पाए। श्रोताओं, लगातार बारिश और मौसम की स्थिति को देखते हुए श्री अमरनाथ जी यात्रा फिलहाल रोक की गई है। ये फैसला सिर्फ श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रख कर लिया गया है। प्रशासन, पुलिस, सुरक्षा बल और श्री अमरनाथ जी यात्रा श्राइन बोर्ड की टीमें हर बेस कैंप पर और यात्रा मार्ग पर लगातार तैनात हैं और पूरी स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। जैसे ही मौसम में सुधार होगा और कोई नया आधिकारिक फैसला लिया जाएगा, उसकी जानकारी हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक धैर्य बनाए रखिए, सुरक्षित रहिए और अपना विश्वास बनाए रखिए।

श्री अमरनाथ जी यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ जरूरी सूचना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का रास्ता ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक।

0: हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ न करें जिससे वहाँ का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज पे सख्त मनाही है और ऐसा करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड भोले बाबा के दर्शन पे जाते हुए आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने में हमेशा तत्पर रहेगा। इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो अपनी फिटनेस पे भरपूर ध्यान दीजिए। इसके लिए रोज के 4 से 5 किलोमीटर वॉक करें, साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम और योगा करिए ताकि सफर के दौरान आप फिजिकली फिट रहे। ध्यान रखिए कि सफर खाली पेट बिल्कुल ना करें। भोले का नाम लें और बिना जल्दबाजी किए सफर आराम से करिए ताकि आपके शरीर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करिए।
1: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पेंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
1: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
1: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
0: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई

0: और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे वहां का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज पे सख्त मनाही है और ऐसा करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन .com पे जाइए या फिर

0: का पथ दूषित हो, प्लास्टिक के यूजेज पे सख्त मनाही है और ऐसा करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड भोले बाबा के दर्शन पे जाते हुए आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने में हमेशा तत्पर रहेगा, इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो अपनी फिटनेस पे भरपूर ध्यान दीजिए। इसके लिए रोज के 4 से 5 किलोमीटर वॉक करें, साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम और योगा।
1: श्रोतो आप समाप्त करें श्री अमरनाथ जी 2024 का विशेष प्रसारण। वक्त हो चला है समाचार का। आकाशवाणी की प्राइमरी सर्विस से अब समाचार रिले होगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
3: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक

होने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात की। उन्होंने नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना के बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री तमांग ने बताया कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रति प्रधानमंत्री के अटूट समर्थन, गहरी चिंता और मजबूत एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त किया। इस बीच सिक्किम में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। सुरंग के अंदर करीब 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन भारत की पहली डेंगू वैक्सीन चोडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय आतंकवादी संगठन आईएसआई की भर्ती मामले में बंगलुरु में 8 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रवर्तन एजेंसी ने कहा कि आरोप पत्र से पता चला है कि आरोपी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से जुड़े थे

0: अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या अपना कोई संदेश भेजना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भेजें। हमारा नंबर है 9596990954। एक बार फिर आप ये नंबर नोट कर सकते हैं, लिख लीजिए 9596990954। कृपया इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज ही भेजें। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है akashvanibaltal@gmail.com, akashvanibaltal@gmail.com। श्रोताओं, अगर आपको श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी किसी भी आधिकारिक जानकारी या सहायता की जरूरत है तो श्री अमरनाथ जी यात्रा श्राइन बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 14464। इसके अलावा टोल फ्री नंबर्स हैं 1800-1800-7198 और 1800-1800-7199। आप श्राइन बोर्ड के ईमेल पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है, लिख लें ithelpdesk@gmail.com और ithelpdesk@gmail.com। हम एक बार फिर सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध करते हैं कि किसी भी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक माध्यम पर ही भरोसा करें। आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण सुन रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
1: अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड भोले बाबा के दर्शन पे जाते हुए आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने में हमेशा तत्पर रहेगा। इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो अपनी फिटनेस पे भरपूर ध्यान दीजिए। इसके लिए रोज के 4 से 5 किलोमीटर वॉक करें, साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम और योगा करिए ताकि सफर के दौरान आप फिजिकली फिट रहे। ध्यान रखिए कि सफर खाली पेट बिल्कुल ना करें। भोले का नाम लें और बिना जल्दबाजी किए सफर आराम से करिए ताकि आपके शरीर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करिए। श्री अमरनाथ जी यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ जरूरी सूचना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का रास्ता ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे वहाँ का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज पे सख्त मनाही है और ऐसा करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ जरूरी सूचना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का रास्ता ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे वहां का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज पे सख्त मनाही है और ऐसा करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड भोले बाबा के दर्शन पे जाते हुए आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने में हमेशा तत्पर रहेगा, इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो अपनी फिटनेस पे भरपूर ध्यान दीजिए। इसके लिए रोज के 4 से 5 किलोमीटर वॉक करें, साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम और योगा करिए, ताकि सफर के दौरान आप फिजिकली फिट रहे। ध्यान रखिए कि सफर खाली पेट बिल्कुल ना करें। भोले का नाम ले और बिना जल्दबाजी किए सफर आराम से करिए, ताकि आपके शरीर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करिए।
1: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
1: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर

के लिए केवल श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड और प्रशासन के आधिकारिक माध्यम पर ही भरोसा करें। अब इस विशेष प्रसारण की जिम्मेदारी संभाल रही है मेरी सहयोगी इरम कुरैशी। मैं आप सब से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।

0: से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें, क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
0: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत

सरस्वती जी भी गुणगान लिखे, फिर भी भगवान शिव जी की गुणगाथा नहीं लिख सकते। आत्मदर्शी पुरुषों ने भी भगवान शिव जी का साक्षात्कार किया, उन उन महात्माओं भी इस महिमा भगवान भोलेनाथ की महिमा नहीं गा सकते, तो हम कौन है? हमारी कोई विषाद नहीं। ऐसे भगवान श्याम सदा शिव जी की बड़ी भारी महिमा शिव महापुराण में गाई गई है। आइए इसमें से रुद्राक्ष की महिमा हम गाए। हमारे भोलेनाथ को रुद्राक्ष बहुत प्रिय है। ऐसे शिवपुराण का विधान है, केवल रुद्राक्ष धारण करने से ही एक चौथाई शिव भक्ति की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। रुद्राक्ष धारण करने से एक चतुर्थांश शिव भक्ति, भस्म धारण करने से एक द्वितीयांश शिव भक्ति, और शिव मंत्र ओम नमः शिवाय बोलने से तीन चतुर्थांश शिव भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और भगवान भोलेनाथ की पूजा करे तो संपूर्ण भक्ति मिल जाती है। केवल रुद्राक्ष धारण करने से इतना लाभ होता है। तो रुद्राक्ष संबंध में शिव महापुराण में कथा लिखी, और ये सब कथा सुत जी, शौनक आदि ऋषि मुनियों प्रयाग तीर्थ में, जहां गंगा यमुना और सरस्वती जी का त्रिवेणी संगम है, वहां एक त्रिवेणी के तटपट पर एक कथा गाई गई है। सुत जी कहते हैं, भगवान शिव ने शिवा की पास भी ये महिमा गाई गई है। ऐसे तो बहुत सम्मान दिखाई देते हैं। ब्रह्मा जी भी अपने मान संतान नारद ऋषि की पास ये कथा कहते हैं, और सनकादिक ऋषि मुनियों भगवान वेद व्यास की पास ये कथा कहते हैं। ऐसा भी बहुत विधान गाया गया है। रुद्राक्ष संबंध में ऐसी कथा है, एक दफा भगवान भोलेनाथ आशुतोष अवधरदानी करुणा वरुणालय प्रात पर ब्रह्म भगवान शिव जी जंगल में तप करने के लिए गए हैं। तप के जो देव है, तपस्या के जो देव है, तप जिन्हों को बहुत प्रिय है, जंगल में जाकर पद्मासन लगाकर ध्यान लगाकर एकांत में और नितांत एकांत में आसन जमाए के भोलेनाथ बैठे हैं और तप करते हैं। तप के देव है जिसको तप बहुत प्रिय है। संसार में जो तप नहीं करता है उसका पत हो जाता है। तप शब्द ही ऐसा है, उसको उलट दो, तप और पत अपने आप पत हो जाता है। मनुष्य जन्म लेकर अगर तप न करे, भक्ति न करे, भजन न करे, तो उसका पत हो जाता है, अपने आप ही उसका पतन होता है। भगवान शिव तो तपस्या के देव है, तप जिसको बहुत प्रिय है। ऐसे भगवान शिव जी जंगल में बैठे हुए तप कर रहे हैं, और जो

अपना ही सहज स्वरूप है, अपना ही भोलेनाथ का। भोलेनाथ का अपना स्वरूप कौन है? ओमकार ही हो भोलेनाथ का अपना अपना अपना स्वरूप, और अपना ही नाद गाने लगे, अपना ही गीत गाने लगे। जीव को भी ऐसा ही करना चाहिए। शिव की अगर भक्ति करना हो तो हमारे जो परात पर ब्रह्म भगवान शिव है उसकी धूम

गुनगुनाना चाहिए, इसलिए तो हम गाते हैं ओम शिव परात पराशिव ओमकारा शिव तव शरणम।

0: ओमकार का भोलेनाथ जंगल में जाकर जाप।
1: श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, मौसम विभाग की पूर्व सूचना के अनुसार भारी वर्षा के कारण दोनों ही मार्गों यानी पहलगाम और बालतल से यात्रा को रोक दिया गया है। और आप सभी को हम ये कह रहे हैं कि आप धैर्य रखें, क्योंकि प्रशासन, SDRF, CRPF की टीम्स आपकी सुरक्षा और सुविधा के लिए बेस कैंप्स पर पूरी तरह से तैनात हैं। अगर आप कैंप में हैं तो कृपया वहां के ऑफिसर्स के इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करें। बारिश रुकने और रास्ता साफ होने के बाद ही आगे बढ़ने की अनुमति मिलेगी। आपकी सुरक्षा ही शिव जी की सच्ची भक्ति है।
2: यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
3: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।
4: जय बाबा बर्फानी।
5: जय भोले, जय भोले।

श्यामाना जी, यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं बालतल से 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, पहलगाम से 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप हमें सुन सकते हैं यूट्यूब की आराधना चैनल पर, डीटीएच पर हम उपलब्ध हैं, और आप हमें सुन सकते हैं वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के अलावा न्यूज़ ऑन एआईआर की आराधना चैनल पर भी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, मौसम खराब होने की वजह से दोनों ही मार्गों से यात्रा को रोक दिया गया है, और अभी जब तक मौसम सुधरेगा नहीं, यात्रा रेज्यूम नहीं होगी। आप जहां हैं, जिस भी बेस कैंप में ठहरे हैं, आपको वहीं ठहरना होगा। प्रशासन, एसडीआरएफ और पुलिस टीम्स आपका ध्यान रख रही हैं, हर जगह आपके साथ हैं आपकी सुरक्षा के लिए। आप फिलहाल जहां हैं वहां आपके खाने पीने की और रहने की पूरे इंतज़ाम किए गए हैं, तो आप सुरक्षित रहें, यही हम चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें। और ज़्यादा ज़रूरी ये कि आप अपना RFID कार्ड हमेशा गले में पहने रखें, क्योंकि उसके बगैर आप कहीं मिसप्लेस भी हो सकते हैं, कहीं जा भी सकते हैं, और उसमें जो बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होती है उसकी वजह से आपको ट्रैक भी किया जा सकता है। तो आप हमेशा RFID कार्ड्स पहने रखें। फिलहाल वक्त हो चला है, हम आपको लिए चल रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली, जहाँ से आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के उस पार फिर से जुड़ेंगे आपके साथ इस विशेष प्रसारण में।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आइंदा इम्तिहानात में सवालनामे के इफ्शा होने की रोकथाम के लिए मरबूत कोशिशों के लिए कहा है। उन्होंने नीट पेपर लीक मामले में मुलव्वस लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाने के हुकूमत के अज़्म को दोहराया है। पार्लियामेंट में मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन की तरफ से हंगामा आराई की वजह से दोनों ऐवानों की कार्रवाई में रुकावट आ गई। सिक्किम के नामची जिले में सुरंग के गिर जाने के बाद 9 अफराद हलाक हो गए और कई लापता हैं। बचाव का काम जारी है। वजीर आजम ने सिक्किम के वजीर आला को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। महकमा मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और लद्दाख में आज बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है और भारत ने कमर्शियल जहाज पर हमले में 4 भारतीय शहरियों की मौत के मामले पर रूसी LG को तलब किया है। अब खबरें तफसील से। कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग, जिसे अब मंगल मिलन के नाम से जाना जाता है, आज पार्लियामेंट हाउस में GMC बालयोगी ऑडिटोरियम में मुनाकिद हुई। मीटिंग के दौरान NDA की इत्तेहादी पार्टियों ने वजीर आजम को सबसे तवील मुद्दत तक भारत के एक मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमात अंजाम देने पर मुबारकबाद की तहरीक मंजूर की। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने नामा निगारों से बात करते हुए कहा कि इस मीटिंग में वजीर आजम ने पूरे मुल्क में मुस्तकबिल में कराए जाने वाले इम्तहानात के सवालनामे इफ्शा होने से रोकने के लिए सभी मुतल्लिका फरीकों की मरबूत कोशिशों के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि जनाब मोदी ने सवालनामा इफ्शा होने में मुलव्वस लोगों के खिलाफ और मुल्क के नौजवानों के मफादात के तहफ्फुज़ के लिए सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाने के हुकूमत के अज़्म को दोहराया। वजीर आजम ने कहा कि जो लोग हाल ही में नीट सवालनामे के केस में मुलव्वस हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और इनमें से 13 मुलजमीन को फिलहाल जेल भेज दिया गया है।
1: आगे

0: पर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को, और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
1: जनाब रिजिजू ने बताया कि वजीर आजम मोदी ने आजाद तिजारती समझौतों के बारे में भी इजहार ख्याल किया, जिस पर कई मुल्कों के साथ साथ भारत ने भी दस्तखत किए हैं। मीटिंग के दौरान जनाब मोदी ने कहा कि हर तिजारती समझौते में भारतीय किसानों के मफादात को आला तरीन तरजीह दी गई है।
0: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे, उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
1: एनडीए के अरकान पार्लियामेंट ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के जेर क्यादत मरकजी सरकार मुल्क में इम्तहानात मुनाकिद कराए जाने में शफाफियत और ईमानदारी को यकीनी बनाने के लिए अहदबंद है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सदर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग यानी मंगल मिलन के दौरान वजीर आजम मोदी ने मुकाबला जाती इम्तहानात में शफाफियत और ईमानदारी को यकीनी बनाने के सरकार के अहद का इदा किया।
2: नीट को लेकर के उन्होंने कहा कि जो गड़बड़ी हुई लोग पकड़े गए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करना है और आगे बेहतर से बेहतर व्यवस्था होगी इसको सुनिश्चित किया जा चुका है और यही कारण है कि फिर से जो परीक्षा नीट की हुई है बहुत ही बेहतर तरीके से हुई।
1: बीजेपी के राज्यसभा के एमपी अशोक मित्तल ने, जिन्होंने पहली मर्तबा एनडीए पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग में शिरकत की, कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि हुकूमत तलबा के साथ है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई नीट पेपर लीक समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन की तरफ से हंगामा आरई की वजह से दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा में दोपहर 12 बजे पहली बार कार्रवाई मुलतवी किए जाने के बाद जब दोबारा शुरू हुई तो ऐवान ने अपोजिशन की आराई के दौरान पार्लियामेंट की मुख्तलिफ कमेटियों के इंतखाबात से मुतालिक तहरीक पर बहस शुरू की। प्रेजाइडिंग अफसर सिंधा रे ने सभी अरकान से जोर देकर कहा कि वो अपने अपने नशस्तों पर चले जाएं और ऐवान की कार्रवाई खुशसलूबी से जारी रहने दें। उन्होंने कहा कि वक्फा सिफर अरकान के लिए है और पूरा मुल्क ऐवान की कार्रवाई देख रहा है। उनकी इस अपील के बावजूद अपोजिशन अरकान हाथों में तख्तियां लिए ऐवान के वस्त में आ गए और नीट और तलबा के मुजाहिरों के बारे में नारे लगाने लगे। इसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। इससे पहले जब ऐवान की कार्रवाई दिन में 11 बजे शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने वक्फा सवालात शुरू करना चाहा, लेकिन अपोजिशन अरकान ने नीट इम्तिहान के पेपर लीक का मामला उठाया। जनाब बिरला ने अपोजिशन से जोर देकर कहा कि वो ऐवान की कार्रवाई में तआवुन दें, लेकिन अपोजिशन अरकान ने अपना एहतजाज जारी रखा जिसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इसी तरह के मनाजिर राज्यसभा में भी देखने में आए। जब राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए पहली बार मुलतवी होने के बाद दोबारा शुरू हुई तो चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने अपोजिशन अरकान से अपील की कि वो अपने अपने नशस्तों पर चले जाएं और ऐवान की कार्रवाई खुशसलूबी से जारी रहने दें, लेकिन अपोजिशन ने इस अपील को नज़रअंदाज कर दिया। शोरगुल के दौरान राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सिक्किम के नामची जिले में समरदुंग के मकाम पर NHPC तीस्ता स्टेज 6 पनबिजली प्रोजेक्ट के जेर तामीर टनल के अंदर फंसे हुए लोगों को बहिफाजत निकालने के गरज से तलाश और बचाव कार्रवाइयाँ जारी हैं। नामची जिले के सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने कहा है कि बचाव टीमों ने अब तक 9 लाशें निकाली हैं। तकरीबन 25 अफराद के टनल के अंदर फंसे होने का अंदेशा है। बावर किया जाता है कि चट्टानों के टुकड़े गिरने के सबब टनल को नुकसान पहुंचा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नामची जिले में जेर तामीर टनल में हादसे के बाद सूरत हाल और बचाव कार्रवाइयों के बारे में मालूम हासिल करने की गरज से आज सिक्किम के वजीर आला प्रेम सिंह तमंग से बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब तमंग ने कहा कि वजीर आजम ने मरकजी सरकार की हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। सिक्किम के वजीर आला ने वजीर आजम की मदद, तशवीश और रियासत के साथ यकजहती के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है। जनाब तमंग ने कहा कि NDRF, SDRF, SSDMA, ज़िला इंतजामिया, मकामी पुलिस, رنگپو پی ایچ سی کی طبی ٹیمیں اور مقامی برادری متاثر

0: यह आग्रह और निर्देश दिया है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें मंगल कामनाओं के साथ ही काम करना पड़ेगा।
1: संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। इसके बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे को लेकर कल नई दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। इसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि विपक्ष विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। संसद के बाहर श्री गांधी ने कहा कि मुद्दा विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है।
2: इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है। ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दैट इज ऑल दे सेइंग, नथिंग रॉन्ग विद इट।
1: सरकार ने उन कई सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि कल दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के दौरान एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में प्रदर्शन से संबंधित कोई मौत नहीं हुई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।

0: के करछम बांध और सिरमौर जिला में गिरी जटोन बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा इन नदियों के साथ लगते इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने व समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। उधर किन्नौर जिला के शलखर और समदो में भूस्खलन और चट्टाने गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर यातायात बाधित हो गया है। वहीं लाहौल स्पीति जिला में भी जहालमा नाले में आई बाढ़ के कारण संपर्क सड़क बह जाने से यातायात बंद है। शिमला जिला के ठियोग उपमंडल में 16 सड़क संपर्क मार्ग भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हैं और चंबा जिला के लाहड़ू नूरपुर मुख्य सड़क में भी टिक्कर गलाधार में भारी भूस्खलन से मार्ग अवरुद्ध हुआ है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उत्तराखंड में बारिश और यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की आशंका के कारण कल स्थगित की गई चार धाम यात्रा आज फिर शुरू हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: चारधाम यात्रा का संचालन जिला प्रशासन, पुलिस, एसटीआरएफ और संबंधित विभागों के समन्वय से किया जा रहा है। यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी की जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यदि भारी बारिश, भूस्खलन या अन्य कारणों से किसी स्थान पर यात्रा मार्ग अस्थायी रूप से बाधित हो तो वे प्रशासन द्वारा निर्धारित सुरक्षित स्थानों पर होल्डिंग एरिया में ही रुके। सभी संबंधित विभागों को मौसम और यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में तेज से बहुत तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, आंध्रिक कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में भी 24 तारीख तक ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मासिक आर्थिक सहायता को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में राज्य सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई सहायता राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने वाणिज्यिक पोत MV गोल्डन लियो पर हुए हमले के संबंध में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लादानोव को तलब किया। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए थे। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि श्री लादानोव से कहा गया कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जान जाना स्वीकार्य नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय आतंकवादी संगठन ISIS में भर्ती से जुड़े मामले में बेंगलुरु में 8 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। इसमें इकरा वेलफेयर ट्रस्ट, गाइडेंस फॉर मैनकाइंड और बेंगलुरु स्थित अन्य व्यक्ति शामिल हैं। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्योडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में नियामक स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के साथ मिलकर लकाडोंग हल्दी मिशन गोल्डन स्पाइस का शुभारंभ किया। मिशन गोल्डन स्पाइस पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए शुरू की गई एक प्रमुख और महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसकी लागत 175 करोड़ रुपये से अधिक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति ने अरावली पर्वतमाला से संबंधित मामलों पर जनता से राय मांगी है। समिति 31 अगस्त से पहले सर्वोच्च न्यायालय को अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि इच्छुक व्यक्ति दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य सत्यापन योग्य सामग्री के साथ अपनी राय mshpcaravali@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से 3 सप्ताह के अंदर भेज सकते हैं। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में

0: गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। ताज़ा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 231 अंक गिरकर 77,478 पर और निफ्टी 52 अंक गिरकर 24,186 पर आ गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा किया और वहां डॉक्टरों के साथ बैठक की। उन्होंने नीट यूजी 2026 का पेपर लीक होने के आरोपों को लेकर कल राजधानी में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों की स्थिति का भी जायजा लिया। श्री नड्डा ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का भी दौरा किया और वहाँ भर्ती घायल प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 11 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: श्यामानाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz पर, FM पहलगाम 100.1 MHz के अलावा आप हमें सुन सकते हैं वेव्स OTT प्लेटफॉर्म, आप हमें सुन सकते हैं YouTube की आराधना चैनल पर और आप हमें सुन सकते हैं न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल ऐप पर। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, मौसम विभाग की पूर्व सूचना के अनुसार भारी वर्षा के कारण दोनों ही मार्गों यानी पहलगाम और बालतल से यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबको धैर्य रखना होगा। प्रशासन, SDRF और पुलिस टीम्स

हर जगह आपके साथ हैं आपकी सुरक्षा के लिए। आप फिलहाल जिस भी बेस कैंप में हैं आप वहीं रहिए, अपने RFID कार्ड्स अपने साथ रखें। आपके खाने पीने का पूरा इंतज़ाम वहाँ किया गया है। आपकी सुरक्षा ही शिव जी की सच्ची भक्ति है। श्रोताओ, आप जानते हैं कि अमरनाथ गुफा कोई आम गुफा नहीं है। पूरे सनातन धर्म में इसको एक विशेष

श्रोताओं, आप जानते हैं कि अमरनाथ गुफा कोई आम गुफा नहीं है। पूरे सनातन धर्म में इसको एक विशिष्ट स्थान है। पुराण कहते हैं कि ये गुफा स्वयं भोलेनाथ का निवास स्थान रही है और यहाँ जो शिवलिंग बनता है वो कोई इंसान नहीं बनाता, वो स्वयंभू है, यानी प्रकृति के चमत्कार से खुद बनता है। पवित्र गुफा की छत से पानी की बूंदें बर्फ के रूप में

को ध्यान में रखते हुए आप जिस बेस कैंप में हैं वहीं ठहरे रहें और थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि जो ही मौसम बिल्कुल ठीक होगा आपको हम सबसे पहले इसी माध्यम के ज़रिए बताएंगे कि बिल्कुल अब यात्रा जो है दोबारा से शुरू हो चुकी है और अब आप शिव जी के दर्शन कर सकते हैं।

0: श्री अमरनाथ जी, यात्रा 2026 के इस विशेष प्रसारण में अब बारी है हमारे रिपोर्टर से जुड़ने की, जो यात्रा ट्रैक पर अलग अलग जगहों पर हमारे साथ जुड़ते हैं वहाँ के अपडेट्स लेकर। अब कुछ ही देर में हम आपको लिए चलेंगे भगवती नगर जम्मू के बेस कैंप में, जहाँ से हमारे साथ हमारे संवाददाता जावेद मेहराब जुड़ते हैं। आज क्या कुछ अपडेट्स हैं वो जावेद से जानेंगे और कोशिश करेंगे ये जानने की कि क्या मौसम कुछ देर में सुधरने वाला है या क्या कुछ पूर्व सूचना है हमारी मौसम विभाग की, वो जानेंगे जावेद से। जी जावेद, क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास?
1: जी, अपडेट्स में सबसे मुख्य रूप से जो सामने है वो खराब मौसम की जो हालात हैं जो यहाँ बने हुए हैं। यहाँ सुबह से जम्मू में मौसम जो है वो खराब चल रहा है और उसकी वजह से जो

है तेज बारिशें और कहीं हल्की बारिशें लगातार चल रही हैं, और इस दौरान यहाँ लगभग 24 घंटों में दोपहर तक लगभग 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी दौरान संभाग के पहाड़ी क्षेत्रों में शदीद बारिशें हुई है। रियासी का क्षेत्र जो है जिसमें कटरा भी आता है वहां लगभग 100 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिशें पिछले 24 घंटों के दौरान हुई है। इसी दौरान कठुआ में लगभग 93% मिलीमीटर और इसी तरह सांबा में लगभग 38 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो शहर में जो है घने बादल छाए हुए हैं और कहीं तेज कहीं हल्की कहीं रुक रुक के बारिशें लगातार जारी है, और शहर बिल्कुल इस मौसम की वजह से बिल्कुल रुका हुआ लग रहा है, क्योंकि आज जो हालात बने हुए हैं वो स्थानीय लोगों के साथ साथ श्रद्धालु भी सड़कों पर बाजारों में कम दिख रहे हैं, क्योंकि बारिश का मौसम होता है सभी कोशिश करते हैं कि अंदर ही घरों के अंदर ही या जिस तरह से श्रद्धालु हैं वो या तो होटलों में रुके हुए हैं या उसके अलावा जो यहाँ पर ट्रांजिट कैंप्स बनाए गए हुए हैं उसमें रुके हुए हैं। तो इसलिए जो हालात है वो जो मौसम की वजह से जो है वो जो आवाजाही है ट्रैफिक की वो मुतासिर हुई है। स्थानीय लोगों के अलावा श्रद्धालु भी आज दिन भर समझ ले आप ट्रांजिट कैंप्स में ही आराम करते नजर आए। उन्हें हालांकि जो ये तीर्थयात्री हैं श्रद्धालुओं से जो हमारी बात हुई जो अपने परिवार सहित यहाँ पहुंचे हैं होटलों में, यहाँ के जो पुराना शहर है वहां पर जो होटल भरे हुए हैं तीर्थयात्रियों से श्रद्धालुओं से, तो कुछ लोग जो कि सभी लोग ट्रांजिट कैंप्स के अंदर ही नहीं है, कुछ लोग जो होटलों में रहना चाहते हैं वो होटलों में भी रुके हुए हैं। तो खराब मौसम के चलते जो लोग परिवार सहित यहाँ पहुंचे हैं वो तीर्थ यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच शहर को देखने का उन्हें मौका भी मिला है, क्योंकि पिछले

0: से जो लोग परिवार सहित यहाँ पहुंचे हैं वो तीर्थ यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच शहर को देखने का उन्हें मौका भी मिला है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से जो है जो यात्रा यहाँ पर रुकी हुई है, इस दौरान उन्हें यहाँ के मंदिरों, पूजा अर्चनाओं में हिस्सा लेने, पर्यटन स्थलों की सैर करने में भी उन्हें मौका मिला है। और इसी तरह से वो अपना समय जो है वो पास कर रहे थे और श्रद्धालुओं के मुताबिक वो प्रशासन के अगले ऐलान का इंतजार कर रहे हैं और बाबा बर्फानी के बुलाने का भी, क्योंकि कई जो श्रद्धालु हैं उनका कहना है कि जब तक बाबा बर्फानी के का बुलावा नहीं होगा तब तक वो यहाँ से निकल भी नहीं सकते। तो अभी समझ लें आपकी एक तरफ जहाँ धार्मिक जो जज्बात है इससे जुड़े हुए हैं, वहीं उसके अलावा जो प्रशासनिक जो ऐलानात है जो जिनकी तरह जिनकी वजह से ये बंद है अभी यात्रा, वही मौसम जो एक बहुत बड़ा रोल निभाता है इस पूरी यात्रा में। हर बार हर बार इस तरह के हालात पैदा होते हैं, कई बार तेज बारिश है, कई बार हल्की बारिश है। हालांकि इस बार जो है महकमा मौसमियात की ने बिल्कुल जो विभाग ने बिल्कुल इस तरह की जो भविष्यवाणी दी है उसमें रेड अलर्ट है, तो रेड अलर्ट में बारिशें तेज भी हो सकती है और पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा खतरा है। उसकी वजह से जो नेशनल हाईवे 44 है वो भी कई जगहों पर वहां भी भूस्खलन हुआ है, तो यात्रा जो जो स्थानीय ट्रैफिक भी चल रहा था वो भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो मौसम अभी खराब है और सबको अगले ऐलान का इंतजार है और अभी लगभग 23 तक ये मौसम ऐसा ही रहेगा और 24 के बाद मौसम साफ होने की उम्मीद है। और इसी उम्मीद में सारे श्रद्धालुओं का यही कहना है कि यहाँ जम्मू में जगह जगह पर लंगर है, स्थानीय लोगों का सहयोग है, जिससे उन्हें पर्यटन विभाग के जो अधिकारी है उनसे भी बातचीत, उनके अनुसार श्रद्धालुओं के लिए जम्मू में विभिन्न ट्रांजिट कैंप्स में हजारों श्रद्धालु के लिए अतिरिक्त ठहरने, आराम करने, उनके भोजन, चिकित्सा और तमाम तरह की व्यवस्थाओं और प्रबंधन का इंतजार है। जरूरत पड़ने पर यहाँ तमाम धर्मशालों और अन्य होटलों में भी श्रद्धालुओं को ठहराया जा रहा है। तो समझ लें आपकी जो हालात है वो सिर्फ रोके हुए हैं मौसम के इस मिजाज की वजह से।
1: जी जावेद, तो 23 तक फिलहाल ये मौसम विभाग की पूर्व सूचना है कि अभी बारिशें 23 तक होंगी और उसके बाद ही हमें उम्मीद है कि यात्रा फिर से रिज्यूम होगी और हमारे जो तीर्थ यात्री हैं वो बाबा बर्फानी के बुलावे के बाद पवित्र गुफा जाएंगे और वहां शिवलिंग के दर्शन करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: बहुत शुक्रिया आपका।
1: जी श्रोताओं, ये थे हमारे संवाददाता भगवती नगर बेस कैंप जम्मू से हमारे साथ जुड़ते हैं जावेद मेहराब, जिन्होंने ये हमें बताया कि अभी जम्मू शहर में जो है वहीं पे रुके

0: यात्रा फिर से रिज्यूम होगी और हमारे जो तीर्थ यात्री हैं वो बाबा बर्फानी के बुलावे के बाद पवित्र गुफा जाएंगे और वहां शिवलिंग के दर्शन करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: बहुत शुक्रिया आपका।
0: जी श्रोताओं, ये थे हमारे संवाददाता भगवती नगर बेस कैंप जम्मू से हमारे साथ जुड़ते हैं जावेद मेहराब, जिन्होंने ये हमें बताया कि अभी जम्मू शहर में जो है वहीं पे रुके

का फासला है, ऊंचे पर्वतों के बीच कठिन रास्ता माना जाता है और इस पे यात्री जो है वो जब बारिश होगी तो इस दौरान वो चल नहीं सकते हैं। और इसके साथ साथ जो घोड़ों पे सवार होके यात्री पवित्र गुफा जाते हैं दर्शन के लिए, उन्हें भी चलने फिरने में दिक्कतों का सामना करना पड़े। लिहाजा प्रशासन ने निर्णय लिया है कि फिलहाल यात्रा निलंबित कर दी जाए ताकि यात्रा जो है और उनकी सुरक्षा प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है, लिहाजा किसी प्रकार यात्रियों को कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े तो फिलहाल यात्रा को रोक दी गई है। और इस हवाले से जितने भी यात्री बालतल बेस कैंप में इन 3 दिनों के दौरान थे उनको पवित्र गुफा की ओर यके बाद दीगरे जाने की अनुमति दी गई और वह यात्री दर्शन करके सुरक्षित वापस बालतल बेस कैंप पहुंचे। और आज सुबह सवेरे किसी भी यात्री को पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति नहीं दी गई और ना ही कोई रुका था। इसलिए जो जिला प्रशासन है, प्रशासन के तमाम अफसर आज बालतल में मौजूद हैं और बाजाबता तौर इसकी निगरानी कर रहे हैं। खासकर डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जतिन किशोर और सुरक्षा की निगरानी एसएसपी गांधरबल सुधांशु दामा कर रहे हैं। उनकी निगरानी में पूरी तरह जो यात्रा है वो आगे बढ़ रही है, लेकिन आज जो यात्रा निलंबित कर दी गई है इस हवाले से वो भी वहां पे मौजूद है और निगरानी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ यात्रा रूट जो हमारी श्रीनगर कारगिल राजमार्ग है इस पे

और मौसम विभाग की ये पूर्व सूचना है कि 23 तक यानी कि 23 तक फिलहाल मौसम जो है वो खराब ही रहेगा। हमें उम्मीद है कि हो सकता है कि मौसम ठीक भी हो जाए, और उम्मीद भी करते हैं कि मौसम ठीक हो जाए और पवित्र गुफा तक जाने का रास्ता भी बिल्कुल ठीक हो, वहाँ कोई भी फिसलन ना हो ताकि आपको कोई भी दिक्कत आगे जाने में ना हो। आप सुनते रहिए ये विशेष प्रसारण, कुछ ही देर में हम और भी संवाददाताओं से जुड़ेंगे फोन लाइंस के जरिए। आप बने रहिए हमारे साथ।

0: जिनमें सैकड़ों यात्रियाते हैं, उसके बगैर भी 12 हटे हैं और 19 13 के करीब लंगर है।
1: जी
0: उनको किसी भी चीज की वहां कमी नहीं है। वो अभी भी अपने जो धार्मिक जो इबादतें हैं वो कर रहे हैं,
1: जी
0: तो इसलिए वो मुतमईन है। लेकिन है कि दिल में है उनको कि हम जल्द से जल्द बाबा का दर्शन करें। जी
1: जी उम्मीद है कि मौसम जल्द से जल्द ठीक हो जाए और हमारे तीर्थयात्री जो हैं बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक

0: जी श्रोताओं, अब बारी है हमारे एक और संवाददाता से जुड़ने की। लिए चलते हैं आपको राष्ट्रीय राजमार्ग, जहां से हमारे संवाददाता मोहम्मद तस्कीन हमारे साथ जुड़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग का हाल हमें बताएंगे, क्या कुछ अपडेट्स हैं तस्कीन आपके पास?
1: जी शुक्रिया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन बानहाल और उधमपुर के क्षेत्र में बारिश हो रही है। ये करीबन से 3 घंटों से बारिशों का सिलसिला जारी है। हल्की हल्की बारिश हो रही है लेकिन मुसलसल हो रही है। तो इस दौरान जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर ट्रैफिक चल रहा है आज, जबकि जम्मू से कोई यात्रा तीसरे रोज भी नहीं थी। अलबत्ता जो कश्मीर से वापस यात्रा आ रही थी, बालतल से जम्मू की तरफ 1278 यात्री थे, 38 गाड़ियों में सवार थे। और इसी तरह पहलगाम से वापस जो यात्री दर्शन के बाद आ रहे थे, 718 गाड़ियों में। तो ये दोनों काफले इस वक्त जम्मू के आसपास, जम्मू तो पहला जो पहलगाम का है ये जम्मू पहुंच चुका है। अलबत्ता जो बालतल वाला है जम्मू पहुंचा चाहता उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से आगे ये बढ़ रहा है। बाकी जो दिन का ट्रैफिक है, जो रूटीन का ट्रैफिक है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का, वो भी चल रहा है इस वक्त। अलमगीर दोनों तरफ से चल रहे हैं, जबकि ट्रकों को आज काजीगुंड कश्मीर से जम्मू की तरफ चलने की इजाजत दी गई है। फिलहाल बारिशें हो रही है, मौसम बहुत खुशगवार हुआ है। अलबत्ता जो हाईवे है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे रामबन डिस्ट्रिक्ट में, किसी किस्म का कोई बाधा नहीं आई इस पर। अलबत्ता उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में जो चिनानी और उधमपुर के दरमियान, कहेंगे चिनानी और जिखेनी के दरमियान, उधमपुर के पास ही जिखेनी जगह आती है, तो इस दरमियान कई 4-5 जगहों पर एक जो ट्यूब है हमारी, जो ऊपर पहाड़ के नीचे से जो सड़क चलती है उस पर करीबन 4-5 जगहों पर स्लाइडिंग हुई, पत्थर गिरे सुबह से, और उसको मतलब उसको साफ किया जा रहा है और किया

0: इस दौरान जो श्री अमरनाथ यात्री करीबन 1000 से जायद जो रामबन डिस्ट्रिक्ट में रोके गए थे, तो अभी कुछ वक्त पहले जो वहां पर नोडल ऑफिसर साहिबान से बात हुई रामबन में, तो उनका कहना है कि जो विजिटर्स थे जो कश्मीर जाना चाहते थे, जो 2 दिन यहाँ रोके रहे, तो उनको छोड़ दिया गया है, अपनी मंजिलों की तरफ जाने की इजाजत दी गई है। जबकि श्री अमरनाथ यात्रियों में से बहुत सारे यात्री मौसम की खराबी को देखते हुए, इसकी जो तवालत को देखते हुए, उन्होंने वापसी का सफर किया है, वापस अपने घरों को चले गए हैं। बहुत सारे यात्री अब कुछ गिने चुने ही रह गए हैं, और मैक्सिमम यात्रियों ने जो वापसी का सफर बांध लिया है, क्योंकि अभी 23 तारीख तक उनको रुकना पड़ता, तो उसलिए उन्होंने, क्योंकि बहुत सारों को छुट्टियों का मसला होता है, कोई लीव पर आता है, किसी को बिजनेस होता है, तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने वापसी की राह ली है। और फिलहाल जो जम्मू से श्रीनगर की तरफ कश्मीर की तरफ, जम्मू उधमपुर और रामबन से कश्मीर की तरफ किसी भी यात्रा गाड़ी को फिलहाल चलने की इजाजत नहीं है। अलबत्ता बाकी जो ट्रैफिक है वो रूटीन के मुताबिक चल रहा है, उसका जो ट्रैफिक शेड्यूल बनाया गया है उनके लिए, उसके मुताबिक जो LMVs और HMVs दोनों ट्रैफिक चल रहा है, LMVs दोनों तरफ से चल रहा है, जबकि HMVs को सिर्फ कश्मीर से जम्मू की तरफ चलने की इजाजत है।
1: जी मोहम्मद तस्कीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।
0: जी शुक्रिया।
1: जी श्रोताओं, ये थे हमारे संवाददाता मोहम्मद तस्कीन, ये बता रहे थे कि राष्ट्रीय राजमार्ग से ट्रैफिक जो है वो चल रहा है, हालांकि जो यात्रा ट्रैफिक है उसको फिलहाल रोका गया है। आप जानते हैं कि पिछले 3 दिनों से किसी भी तीर्थयात्री को आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है मौसम ख़राब होने की वजह से, और रामबन में 1000 से ज़्यादा तीर्थयात्री जो रुके हुए थे, उनमें से वो विजिटर्स जो सिर्फ कश्मीर घाटी आना चाहते थे घूमने के लिए, उन्हें आगे जाने की अनुमति दी गई है कश्मीर की तरफ। और ऐसे कुछ लोग जो सिर्फ पवित्र गुफा पे जाके तीर्थ यात्रा करना चाहते थे, उनमें से ऐसे कुछ लोग भी हैं जो वापस अपने घरों को लौटे हैं, और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो वहाँ अभी भी रुके हुए हैं और बाबा बर्फानी के बुलावे का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मौसम ठीक हो और कब उन्हें आगे जाने की अनुमति दी जाए। ये बता रहे थे हमारे संवाददाता मोहम्मद तस्कीन, जो बानिहाल से हमारे साथ जुड़ते हैं। आपको बताते चले, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण। आप हमें सुन पा रहे हैं FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज के अलावा आप हमें YouTube पर आराधना चैनल के जरिए सुन सकते हैं, DTH पर भी हम उपलब्ध हैं, और वेस OTT प्लेटफॉर्म के अलावा आप हमें न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल ऐप पर आराधना चैनल पर भी सुन सकते हैं। यात्रा से जुड़े सभी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते हैं इस विशेष प्रसारण के ज़रिए, और हम कोशिश करते हैं कि जो भी अपडेट्स हम तक पहुंचे वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएं। जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
3: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसके अलावा आप हमें न्यूज़ ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। आप हमें आराधना चैनल जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है उस पर भी सुन सकते हैं। वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी हम उपलब्ध हैं और आप हमें डीटीएच पर भी सुन सकते हैं। श्रोताओं, अब बात करते हैं उस कथा की जिसके बिना ये यात्रा अधूरी है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि आप अमर हैं पर मुझे बार बार पुनर्जन्म लेना पड़ता है, तब महादेव उन्हें अमर कथा सुनाने के लिए राजी हुए। वो रहस्य जो सृष्टि के जन्म और मरण से परे है, पर शर्त ये थी कि कोई भी तीसरा जीव इस कथा को ना सुने। इसलिए शिव जी ने सबसे पहले अपनी सभी चीजों का त्याग किया। उन्होंने पहलगाम में अपने नंदी को छोड़ा, चंदनवाड़ी में माथे के चंद्रमा को उतारा, शिशनाग झील पर अपने सपनों को छोड़ा और पंचतरणी पे पांचों तत्वों का त्याग कर दिया। जब वो अमरनाथ गुफा पहुंचे तो उन्होंने चारों तरफ अग्नि का घेरा बना दिया ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। पर दोस्तों, कहते हैं होनी को कौन टाल सकता है। गुफा के भीतर एक कबूतर कांडा था जो उनकी अग्नि से बच गया। जब महादेव कथा सुना रहे थे और माता पार्वती कथा सुनते सुनते सो गई तो उन दो कबूतरों ने हूं हूं करके कथा पूरी सुन ली और वही दो कबूतर आज भी अमर हैं। शिव जी के वो भक्त जो पूरी आस्था से वहां जाते हैं, आज भी माना जाता है कि अमरनाथ गुफा में वो दो सफेद कबूतर आज भी दिखते हैं उन सच्चे भक्तों को जो सच्चे दिल से अमरनाथ गुफा जाते हैं पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने, और उन्हें वहां उन दो सफेद कबूतरों के भी दर्शन हो जाते हैं जिन्होंने अमर कथा सुन के वो अमर हुए थे। जी श्रोताओं, तीर्थ यात्रा से जुड़े सभी अपडेट्स, सभी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं इस विशेष प्रसारण के जरिए। अब आपको कुछ और भजन सुनाते हैं।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल से 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, एफएम पहलगाम से 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा आप हमें डीटीएच पर सुन सकते हैं। हम उपलब्ध हैं वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी और आप हमें न्यूज़ ऑन एआईआर के मोबाइल ऐप के अलावा यूट्यूब की आराधना चैनल पर भी सुन सकते हैं। श्रोताओं, अपडेट्स के अनुसार अभी आज तीसरे दिन भी यात्रा स्थगित ही है, क्योंकि आप जानते हैं पिछले 3 दिनों से मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी थी कि मौसम खराब रहेगा और भारी वर्षा के कारण दोनों ही मार्गों यानी पहलगाम के पारंपरिक मार्ग और बालतल के मार्ग से आगे जाने की इजाज़त किसी को भी नहीं दी गई और जम्मू से भी यात्रा ट्रैफिक को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में खराब मौसम के चलते हल्की हल्की बारिशें हो रही हैं, तेज़ बारिशें भी हो रही हैं कई जगहों पर, और जम्मू में 42 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई पिछले 24 घंटों में। कटरा में 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, कठुआ में 93 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई पिछले 24 घंटों में, सांबा में 38 मिलीमीटर बारिश जो है पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड की गई है, और वहाँ घने बादल छाए हुए हैं और जिस वजह से, जैसा कि आपने पहले भी बताया, तेज़ बारिशें भी हो रही हैं और हल्की हल्की बारिशें भी हो रही हैं, और हर जगह स्थानीय लोगों के साथ साथ जितने भी श्रद्धालु हैं जो जम्मू में ठहरे हुए हैं अलग अलग ट्रांजिट कैंप्स में या पुराने शहर में जो परिवार के समेत आए हैं, वो निजी होटल्स में भी वहाँ ठहरे हैं और वो वहाँ मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं और बाबा बर्फानी के बुलावे का इंतज़ार कर रहे हैं। यही उम्मीद करते हैं कि मौसम जल्दी ठीक होगा और जितने भी तीर्थयात्री बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अपने घरों से चले हैं और अलग अलग जगहों पर अभी फ़िलहाल वो रुके हुए हैं अलग अलग ट्रांजिट कैंप्स में, जम्मू से लेकर बिल्कुल बालतल और नुनवन बेस कैंप तक के अपडेट्स हम आपको देते रहते हैं। और अभी जम्मू की बात हमने की कि कैसे वहाँ तीर्थयात्री अलग अलग ट्रांजिट कैंप्स में या पुराने शहर की जब बात करते हैं वहाँ के निजी होटलों में ठहर के जो है बाबा बर्फानी के बुलावे का इंतज़ार कर रहे हैं। फिलहाल मौसम विभाग की चेतावनी ये कि 23 तारीख तक बारिशें अभी होंगी और फिलहाल रेड अलर्ट जारी किया गया है कि बारिशें काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं, इस वजह से आज तीसरे दिन भी यात्रा स्थगित ही रही और बालतल बेस कैंप में भी आज किसी भी यात्री को आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई। तीसरे दिन भी यात्रा स्थगित ही रही और मौसम वहाँ भी काफ़ी ख़राब है, और जैसा कि हमारे संवाददाता रहीम रिजवान से जब हम फ़ोन लाइन पर बात कर रहे थे उन्होंने ये बताया कि तेज़ वर्षा के कारण जब यात्रा ट्रैक पर वर्षा होती है तो क्योंकि दुमेल कंट्रोल गेट से जब हम पवित्र गुफा की जानिब जाते हैं तो 14 किलोमीटर का लंबा रास्ता होता है, कठिन चढ़ाई है, सीधी चढ़ाई है, एक दिन में ये तीर्थ यात्रा जो है कम्प्लीट हो जाती है, पर ये सीधी चढ़ाई होने की वजह से जो है फिसलन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है यात्रा ट्रैक में, और इसी वजह से यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो इसी वजह से तीर्थ यात्रियों को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। और आपकी सुरक्षा के वजह से ही प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि किसी भी तीर्थ यात्री को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा ही बालतल में भी हुआ, बालतल बेस कैंप में जितने भी तीर्थयात्री कल तक वहाँ मौजूद थे उन्हें आगे जाने की अनुमति दी गई और उनमें से कुछ लोग तीर्थयात्रा करके वापस भी लौटे हैं। जम्मू पहुँच चुके थे दोनों ही कॉन्वॉयज, पहलगाम से भी और बालतल से भी 6000 के आसपास लोग कल शाम 5 बजे तक पवित्र गुफा में जाके पवित्र शिवलिंग का उन्होंने दर्शन किया था। और आज की बात अगर हम करें तो आज तीसरे दिन भी यात्रा स्थगित ही रही मौसम ख़राब होने की वजह से। पहलगाम से हमारे संवाददाता तारिक साहब हमारे साथ जुड़े, उन्होंने ये बताया कि वहाँ भी आकाश मेघावृत है, चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, ठहर ठहर के वर्षा हो रही है, कभी मध्यम रफ्तार में तो कभी तेज़ वर्षा हो रही है, जिसकी वजह से आज भी यात्रा स्थगित ही रही। फिलहाल हमारी यही उम्मीद कि मौसम जल्द अज जल्द ठीक हो जाए और हम यही प्रार्थना करते हैं कि मौसम जल्दी ठीक हो जाए और हमारे तीर्थयात्री जो अलग अलग ट्रांजिट कैंप्स में ठहरे हुए हैं उन्हें
बाबा बर्फानी का बुलावा आए और उनकी मनोकामनाएं लेकर वो बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक जाएं और वहाँ जाके पवित्र गुफा में जाके पवित्र शिवलिंग के दर्शन करके पूरी इंसानियत के लिए भी दुआ करें, अपनी मनोकामना भी वहाँ जाके उनसे मांगें। और उम्मीद यही कि आपको पवित्र गुफा तक जल्दी आप पहुँच जाएं और पवित्र शिवलिंग के दर्शन प्राप्त कर सकें।

श्यामाना जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz के अलावा FM पहलगाम 100.1 MHz पर। इसके अलावा आप हमें DTH पर भी सुन सकते हैं। हम उपलब्ध हैं वेव्स OTT प्लेटफॉर्म के अलावा YouTube की आराधना चैनल और न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल ऐप पर भी। श्रोता, अब एक छोटा सा पैगाम आप सभी के नाम जो इस वक्त अलग अलग ट्रांजिट कैंप्स में ठहरे हुए हैं और अमरनाथ यात्रा के रिज्यूम होने का इंतज़ार कर रहे हैं। श्रोता, हम समझते हैं जब हम किसी बड़े बुलावे के लिए निकलते हैं तो रास्ते का हर एक मिनट का इंतज़ार बहुत लंबा लगता है। मन करता है कि बस अभी पहाड़ जड़ें और बाबा बर्फानी के दर्शन कर लें। लेकिन आप जानते हैं, शिव जी की यात्रा सिर्फ कदमों से नहीं, सब्र और श्रद्धा से पूरी होती है। पहाड़ों में मौसम का मिजाज थोड़ा नखरे दिखा रहा है, लेकिन ये ठहराव आपकी सेफ्टी के लिए ही है। इस वक्त उदास होकर ना बैठें, अपने आसपास के तीर्थयात्रियों से बातें करें, कहानियां बांटें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ट्रांजिट कैंप्स में जय भोले की रौनक बनाए रखें। प्रशासन और हमारे जवान दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि आप सेफ रहें। जैसे ही मौसम साथ देगा, रास्ते फिर से खुलेंगे और आप बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक जा पाएंगे। बस अपना ध्यान रखिए और पानी पीते रहिए, क्योंकि इस मौसम में डिहाइड्रेशन होने का खतरा होता है। और पूरे विश्वास के साथ बोलें, हर हर महादेव।

सारे गाँव माए सारे गाँव माथा मदनी द मगरी ग मदनी द मदनी सा नि द मगरी।

श्यामाना जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz के अलावा FM पहलगाम 100.1 MHz पर। इसके अलावा आप हमें DTH पर सुन सकते हैं। हम आपके साथ मुखातिब हैं आराधना चैनल के ज़रिए, और आप हमें न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार आज तीसरे दिन भी यात्रा को दोनों मार्गों से स्थगित करना पड़ा, बिकॉज वर्षा हुई और प्रशासन ने ये फैसला लिया कि किसी भी यात्री को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई भी यात्री जो है ना बालतल बेस कैंप से आगे गया और ना ही ढुनवन बेस कैंप से पहलगाम की मार्ग की ओर आगे बढ़ने की इजाज़त उन्हें दी गई। श्रोताओं, आप सबको धैर्य रखना होगा। प्रशासन, SDRF और पुलिस टीम्स हर जगह आपके साथ हैं, आपकी सुरक्षा के लिए हैं। और आप फिलहाल जहां भी हैं, जिस भी ट्रांजिट कैंप में रुके हैं, आप वहीं रुके रहें। आपकी रहने पीने की, खाने पीने की सभी सुविधाएं वहां रखी गई हैं, सभी इंतज़ाम वहां रखे गए हैं, और प्रशासन ने हर जगह आपके लिए सभी सुविधाएं जो है उपलब्ध कराई हैं। श्रोताओं, आपकी सुरक्षा के लिए ही ये फैसला लिया गया है कि आज तीसरे रोज भी यात्रा निलंबित ही रही। और जैसा कि आज भी वर्षा हो रही है, फिर वो श्रीनगर की बात हो, जम्मू की बात हो, पहलगाम या गांदरबल, सभी जगहों में वर्षा हो रही है। और जैसा कि मौसम विभाग ने चेतावनी जताई है कि 23 तक वर्षा ही होगी, और क्योंकि वर्षा हो रही है और वर्षा में यात्रा ट्रैक में फिसलन होती है, और उस फिसलन की वजह से यात्रियों को दिक्कत होती है आगे जाने में, क्योंकि आप जानते हैं जो यात्रा ट्रैक है वो खड़ी चढ़ाई है, और वहाँ से आगे बढ़ने में तीर्थयात्रियों को दिक्कत होती है। इस वजह से आज भी यात्रा नहीं हो पाई, और फिलहाल 23 तारीख तक मौसम विभाग ने ये पूर्व सूचना दी है कि वर्षा होगी। हम उम्मीद जताते हैं कि वर्षा ना हो और

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल से 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, एफएम पहलगाम से 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप हमें यूट्यूब की आराधना चैनल पर सुन रहे हैं। आप हमें सुन सकते हैं डीटीएच पर, वेज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी हम उपलब्ध हैं, और आप हमें न्यूज़ ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, आज तीसरे दिन भी अमरनाथ जी की यात्रा को आज भी स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि पिछले तीन दिनों से वर्षा के कारण यात्रा ट्रैक में फिसलन है और प्रशासन ने ये फैसला किया कि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से आज तीसरे दिन भी यात्रा नहीं हो पाई। मौसम विभाग की पूर्व सूचना के अनुसार 23 तारीख तक बारिशें होने की अपेक्षा है और रेड अलर्ट फिलहाल जारी किया गया है। हमें उम्मीद है कि यात्रा जल्द से जल्द रिज्यूम होगी और बाबा बर्फानी का बुलावा हमारे तीर्थयात्रियों के लिए आएगा, और हमारे तीर्थयात्री जो अभी अलग अलग ट्रांजिट कैंप्स में ठहरे हुए हैं, वो वहाँ की सभाओं में हिस्सा लेंगे, जहाँ के अलग अलग मंदिरों में जाके पूजा अर्चना करेंगे, ताकि बाबा का बुलावा उन्हें आए और वो इस पवित्र यात्रा पर जाके पवित्र शिवलिंग के दर्शन प्राप्त कर सकें। श्रोताओं, अब आपको आरती सुनवाते हैं।

0: हरे ओम हर हर मर हर महादेव ओम जय शिवाय ओमकार
1: ओम मन बाज शिवाय
0: ओमकार
1: ओम मन बाज शिवाय
0: ओमकार
1: ओ शिव गण मेरुंडम ओ शिव योरत मृगशाला ओ शिव रहते मतवाला ओ शिव पार्वती का प्यार ओ शिव यो पर जल ओ शिव बात पर मन वाला ओ शिव भोले जटाओ वाला ओ शिव बैल चढ़न वाला जटाओ में गंगा विराज मस्तक
0: चंद्रमा विराज
1: औरत मृगशाला हरि ओम हर हर हर हर महा ओम हर हर हर हर महा ओम हर

0: 사랑 보자겐 라하라 사다바 산다 레다야 라벤데 바밤 바바네 사헤담 나마네
1: 트와메바 마타 차피다 트와메바
0: 트와메바 반도

सभी भक्तजन भोले बाबा के इस दिव्य दरबार से भोले बाबा की पवित्र आरती का दर्शन कर रहे हैं, आरती श्रवण कर रहे हैं। इस वर्ष की आज सायंकाल की अंतिम आरती है इस दरबार से। सभी भक्तजन चाहे MH1 चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, चाहे बाबा के दरबार में बैठकर बाबा की आरती श्रवण कर रहे हैं। भोले बाबा से सभी भक्तजन यही प्रार्थना करेंगे कि हे भोले बाबा, इस वर्ष की यात्रा में हम सभी ने बड़े ही तन मन से भोले बाबा की सेवा की है। यदि भोले बाबा इस सेवा में, इस यात्रा में हमसे कोई त्रुटि हो गई हो, कोई सेवा में कोई गलती हो गई हो, तो भोले बाबा अपना दास समझकर, अपना बच्चा समझकर हमें क्षमा करना। कई बार हम जानबूझ के हमारे से गलती हो जाती है, कई बार जाने अनजाने में हो जाती है, तो भोले बाबा यदि हमसे कोई त्रुटि हुई हो इस यात्रा में, इस सेवा में, तो हमें भोले बाबा क्षमा करना। और समस्त भक्तों के ऊपर जो इस दरबार में आए हैं या अपने घर से देख रहे हैं, सबके ऊपर बाबा अपने चरणों की भक्ति, अपने चरणों की शक्ति बना के रखना, सबको खुश रखना, स्वस्थ रखना, ढेर सारा आशीर्वाद बनाए रखना, और हमें हर साल इस दरबार में बुलाते रहना। तो इसी के साथ आज सभी भक्तजन बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ दोनों हाथों से ताली का वादन करते हुए भोले बाबा के सुंदर भजन का ध्यान करेंगे।

0: धर्म के
1: जय हो,
0: अधर्म का
1: विनाश हो,
0: प्राणियों में
1: सद्भावना हो,
0: विश्व का
1: कल्याण हो,
0: गौ माता की
1: जय हो,
0: मात पिता की
1: जय हो,
0: गुरु जनों की
1: जय हो,
0: सभी संतों की
1: जय हो,
0: सभी भक्तों की
1: जय हो,
0: सत्य सनातन धर्म की
1: जय हो,
0: आज के आनंद की
1: जय हो,
0: भारत माता की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान के परिवार की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान के गणों की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान के भक्तों की
1: जय हो,
0: अमरनाथ स्वामी की
1: जय हो,
0: बाबा बर्फानी की
1: जय हो,
0: पार्वती माता
1: हर हर हर।

प्रस्तुत है धनुष यज्ञ का कार्यक्रम, जहां बड़े बड़े योद्धा, राजा, सूर्यवीर, बाणासुर जैसे योद्धा धनुष को तोड़ने के लिए अपने अपने बल का प्रयोग करते हैं। उसी दरबार में श्री राम लक्ष्मण अपने गुरु के साथ उपस्थित हैं। बारी बारी से सूर्यवीरों के प्रयास करने पर भी धनुष नहीं उठा। तत्पश्चात भगवान श्री राम अपने गुरु का चरण छूते हुए प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। धनुष दो टूक हो जाता है। धनुष टूटने की आवाज सुनते ही परशुराम जी की तपस्या भंग होती है और उठकर जनक की सभा में पहुंचते हैं। परशुराम जी को गुस्से में देख भगवान राम जी हाथ जोड़ अपनी सारी बातें कुछ इस प्रकार बताते हैं।

अब प्रसंग कुछ इस प्रकार से है। उधर अयोध्या से बारात प्रस्थान के पश्चात महिलाएं स्वांग रचाकर विभिन्न भेष धारण कर नक्टा प्रस्तुत करती हैं।

जनकपुर से चारों बेटे बहुओं की बारात लौटने के पश्चात परिछन करने के लिए तीनों रानियां पारंपरिक रीति से गीत गाकर हंसी खुशी परिछन करती हैं।

ही भगवती महाशक्ती, की जी पुण्यात्मा होना निवासोमा लक्ष्मी रूपे, पापी जनों ने त्या दरिद्रता रूपे, तो शुद्ध चित्तवाड़ाओ ने त्या हृदय में बुद्धि रूपे, सत्पुरुषों में सिद्धि रूपे, कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूपे निवास करे छे, ए देवी समग्र विश्वनो कल्याण करो।

0: तैरस्मान् रक्ष सर्वतः।
1: ये सिद्धिदात्री भगवती छे। आ संदर्भमां भगवती दुर्गा उमानु पण एक स्वरूप छे के जे शंकराचार्य जी थी बहुज प्रेम थी वंदित थयेलू छे।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

अयोध्या में हर्ष और उल्लास के साथ श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गईं, परंतु विधि का विधान कुछ और था। राजा दशरथ ने माता कैकेयी को 3 मांगें पूरी करने का वचन दिया था। विधि की प्रेरणा से माता कैकेयी ने राम के 14 वर्ष वनवास की मांग की। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचनु न जाई। और पिता के वचन को निभाने के लिए राम जी चले वनवास।